हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News
5: brought to you by
6: Sona Yuya Ganvathai.
7: 9,900 में 2,761 गिलगित बल्तिस्तान में 1,721 इस्लामाबाद में 1,245 एक आलमी मरकज रियाज में 237 उम्मीदवार टेस्ट दींदा उम्मीदवारनि लाइ जोवीनाइल रिकॉर्ड जो शर्त ख़तम खयन पाण सां गॾु मार्कशीट आणण जी हिदायत कराची हैदराबाद जामशोरो मीरपुर ख़ास शहीद बेनजराबाद लाड़काणो ऐं सखर समेत 8 सेक्टरनि लाइ कमेटियूं क़ाइम PMDC ॼाणायो आहे त हर सूबे लाइ घटि में घटि 2 धार सुवाल नामा तयार कया विया आहिनि इम्तिहान लाइ हर पर्चे में 180 सुवाल शामिल हूंदा कलात वेझो आहिनि 5 ते सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मारिजी विया 23 मुगी बाज़ियाब ISPR मूजिब 19 सेप्टेम्बर जे विच वारी राति सिख दहशतगर्दनि 25 ते चौकी क़ाइम कई हुई दहशतगर्दनि जो शहरियुनि खे अगवा करण भतो वठण जी मनसूबो हो सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ मोस्तर कार्रवाई करे नापाक इरादा नाकाम बणाए छॾिया फायरिंग जी ॾे वठ में 5 दहशतगर्द मारिजी विया दहशतगर्दनि जी थाक सां 23 मुकवीन खे बाज़ियाब करायो वियो दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां वॾे मक़दार में गोला बारूद धमाकेदार मवाद ऐं हथियार मिलिया आहिनि दहशतगर्दनि जे थाक तां 6 ट्रक 3 बसूं ऐं 2 कारूं बि मिलियूं आहिनि कलात ऐं भरपासे में दहशतगर्दनि जे ख़ात्मे लाइ क्लीयरेंस ऑपरेशन जारी आहे क्लीयरेंस ऑपरेशन जो मक़सदु मक़ामी आबादी क़ौमी शाहराहनि जी सिक्योरिटी यकीनी बणाइण आहे ऑपरेशन अज़म इस्तक़ाम त दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ भरपूर अज़म सां जारी रहंदी

पीएर सऊदी अरब ते मिज़ाइल हमला, रियाज ते बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हमलो नाकाम। सऊदी इताल चवण आए ताइफ बेश फुरसान अंब शहरन ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला नाकाम बणाया विया आहिनि। हुसी बागियुनि शहरी इलाइक़नि खे निशानो बणाइण जी कोशिश कई। रियाज ते फायर कयल बैलिस्टिक मिज़ाइल खे अदब ते पहुचण खां अॻु तबाह कयो वियो। तुर्की हाउसी बागनि ख़िलाफ़ सऊदी अरब जी मदद ते गौर वीचार शुरू करे छॾियो। तुर्क परडे॒ही वज़ीर हाकान फिदान चयो आहे त हूसी बागियुनि जे हमलनि ख़िलाफ़ सऊदी अरब जी मदद कंदासीं। मका मुआदे तहत पाकिस्तान सां गॾिजी सऊदी अरब जी फ़ौजी मदद ज़रूरतुनि जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। यमन जंग ख़तम करण लाइ सभिनी धुरियुनि ताईं तजवीज़ूं पहुचाए छॾियूं आहिनि। सऊदी अरब खे ईरान अमरीका जंग जो हिसो क़बूलण जोॻो न आहे। विचोबर जो बुरान हाणे मुआशी तौर बि नाक़ाबिले क़बूल बणिजी चुको आहे। छिकताण वारो माहौल हाणे ख़तम थियणु घुर्जे। यमन जे ॾाखिणे इलाइक़े में सरकारी फ़ौज जो हूसी बागियुनि ते हमिलो, घटि में घटि 48 ॼणा मारिजी विया। केतिरा ई ज़ख़्मी हूसियुनि पारां वेक्ट्री यमनी फ़ौजियुनि खे मारण जी दावा। परडे खबर इदारे मूजिबि यमनी सरकारी फ़ौज जे हमले में 3 खां वधीक हूसी मारिजी विया आहिनि, जॾहिं त हूसियुनि 31 यमनी फ़ौजियुनि खे मारण जी दावा कई आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार जो ईरानी परडे॒ही अब्बास इराक़ची सां फ़ोन ते राब्तो। इसहाक डार ऐं अब्बास इराक़ची ख़ते जी सूरतहाल ऐं बतरफ़न लाॻापनि ते ॻाल्हियूं कयूं। परडे खाते मूजिबि ॿिन्ही अॻवाननि ख़िते जी तब्दील थींदड़ सूरतहाल ते बि ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। राब्ते दौरान तवानाई वारा रस्ता महफ़ूज़ बणाइण ते बि ॻाल्हियूं कयूं वयूं। कयल क़ौमुनि जे इजलास दौरान मुलाक़ात करण ते बि इतफ़ाक़ इसहाक डार चयो त तकरार जूं ॻाल्हियुनि ज़रिए हल गढे सघजे थो।

0: ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई कतरी ए पाकिस्तानी टाकरे कदन से मुशावरत जारी है। ईरान अमेरिका से गालियों लाए पंजा शर्त उन पुछा छा अरब मीडिया के इंटरव्यू डींदे मोहसिन रज़ाई तो ईरान फिसलाए जंग लाए तैयार है। ट्रंप के धमकियों को कोम नतीजो न निकरदो नेतन्याहू जी भड़कायल जंग मां निकरण लाए ईरान जा शर्त मञण वाशिंगटन के मफाद में हूंदो। अफगान सरजमीन तां भारतीय सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी के रोकण अफगान तालिबान की जिम्मेवारी है। रियासती पॉलिसी बिल्कुल वाजिया है तो दहशतगर्दन से गालू न थींदियूं। अरब टीवी के डिनल इंडो के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अमल शरीफ चौधरी है पाकिस्तान में थींदड़ आबगादी अमलन में 80% अफगान शहरी मुलवस हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान में दाखिल थींदड़ दहशतगर्दन में अफगानी शामिल हूं। बलोचिस्तान गर्दी के भी अवामी हिमायत पाकिस्तान उनमें शरीफ ने सऊदी अरब की हिफाजत लाए का हद तई वन तैयार है। सफारती सतह से भी सऊदी अरब से गड बीठल आयु पाकिस्तान अमली तौर से भी सऊदी अरब की मदद लाए मौजूद है। सऊदी अरब की सलामती लाए असो अजम गैर मशरूत है कं भी जारत खिलाफ सऊदी अरब जो दिफा कर तैयार आयु।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91।

हिन केसेट खां सवाइ साइण आबद परवीन जूं इंतिहाई वजदानी ऐं रूहानी कैफियत में गयल 16 तदबियूं केसतूं पिण डबल ए पारां जारी कयूं वियूं आहिनि। हाणे मोहम्मद कासिम माका खे इजाज़त जाॾे पेर ताॾे ख़ैरु।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Sona Yulia Granular. मिट्टी जो मान वधाई.
5: 1245 एक आलमी मरकज रियाज में 267 उम्मीदवार टेस्ट दींदा उम्मीदवार के लिए यूनियन कार्ड शीट आने की हिदायत कई गर्मी सबब बेहोश थी गयो कलात वेझो एन 225 ते सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन 5 दहशतगर्द मारजी विया 23 मुगी बाज़ी

0: हाकान फिदान चयो आहे त हूसी बागन जे हमले ख़िलाफ़ सऊदीअ जी मदद कंदासीं। मका मुआदे तहत पाकिस्तान सां गॾिजी सऊदी अरब जे फ़ौजी ज़रूरतुनि जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। यमन जंग ख़तम करण लाइ सभिनी धुरियुनि ताईं तजवीज़ूं पहुचाए छॾियूं आहिनि। सऊदीअ खे ईरान अमरीका जंग जो हिसो क़बूल जोॻो न आहे। विचोभर जो बोहरान हाणे मुआशी तौर बि नाक़ाबिले क़बूल बणिजी चुको आहे। शिकत आणण वारो माहौल हाणे ख़तम थियणु घुर्जे।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
3: Hame the deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aisi diamond skin jaisi. Hame diamond glow bleach cream.
4: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
0: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11 a.m. This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News
4: brought to you by
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम. दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ 2 मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन 2 मुमालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के 2 कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम.

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ, एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुश खबरी, सिंध जो मशहूर अखियुनि जो माहिर सर्जन डॉक्टर गुलाम हुसैन तुनियुम साबका इंचार्ज अखियुनि जी अस्पताल LRBT गंबट जदीद मशीन कंप्यूटर वसीले अखियुनि जो चेकअप लेजर फीको मशीन वसीले मोती पानी जो कामयाब ऑपरेशन कंदा उन अलावा
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मुझे बता दें ताकि वो हम आपका सॉन्ग प्ले जरूर करें अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो। और इसके अलावा जो न्यूली बंदे हमें जो करेंगे उसका हम सॉन्ग ऐसे ही प्ले करेंगे। जाइए और जाकर मजे कीजिए, अपने पसंदीदा सॉन्ग का नाम बताइए और अपने पसंदीदा सॉन्ग को सुनिए FM के ऊपर। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है नूर सन्तोनिया, हमारे साथ कहते हैं रहते हैं और कहते हैं कि सिस्टर आरजे सना आपका शो बड़ा जबरदस्त है, सुपर डुपर एंड ब्यूटीफुल है, थैंक यू सो मच। और साथ में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम नूर सन्तोनिया फ्रॉम बदिन, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेज एंड टेक केयर, अल्लाह पाक आप हमेशा सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन आमीन सुमा आमीन। वालेकुम सलाम नूर सन्तोनिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कि आप कैसे हैं और कल आपको भी हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आवाज रखे और बामुराद रखे और ऐसे ही आप हमेशा खुश रहें और ऐसे ही हमारे शो को ज्वाइन करते रहें और ज्वाइन करते रहें। मेरा शो आपके साथ में होती हूँ पूरे इतवार ओनली इतवार को पूरे दो घंटे के लिए, तो आप मेरे साथ मौजूद होते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं, बात करते हैं और मजे मजे के सॉन्ग को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो जी ऐसे ही आपने मेरे साथ रहना है और मेरे साथ आपके जवाब मुझे जरूर दीजिएगा नूर सन्तोनिया, मुझे इंतजार रहेगा आपका और थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट, अच्छे अच्छे जैसे कॉम्प्लीमेंट्स आपने मुझे दिए हैं। अच्छा मुझे टाइप करने के लिए और कमेंट करने के लिए आपने परेशानी होना है, आपने टाइप करना है 888-1888-1 पे आप इसके लिख के आप लोग मुझे SMS करते हैं मेरे सवाल का जवाब। और जो फेसबुक पे लाइव कमेंट करना चाहते हैं फेसबुक ऑन करना है, ये फिर मेरे ट्वीट का पेज आपने ओपन कर लेना है, मेरे नाम का फ्लैट आपको दिख जाए बता देते ना, आओ बात करें में शामिल हो जाते हैं आप लोग, जो कि जहाँ पर दिल की भी आ रहा था और तकरीबन तो वो खास तौर पर आप लोगों के लिए ही चलता है वो, क्योंकि फैज़ अली की आवाज यार क्या कहने हैं, मतलब अच्छा लगता है बहुत। अगर सुबह ही नहीं लगती अगर उनकी आवाज में एक सॉन्ग ना सुने, सॉन्ग सारे अच्छे हैं, सिंगर सारे अच्छे हैं, लेकिन होता है कि यार सुबह नहीं लगती, उसको दिल पे लग जाए तो बस ऐसे ही होता है। तो मैंने वो फैज़ अली के बाद में वो सॉन्ग प्ले कर चुके हैं, इसके अलावा अगर आपने कोई और सॉन्ग की फरमाइश करनी है तो आप वो मुझे जरूर बताएं ताकि हम वो प्ले जरूर करेंगे अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होता है तो। लेकिन रहेगा मेरे साथ और आपने मतलब देर तक मुझे मेरे सॉन्ग को एंजॉय करते रहना है और सुनते रहना है कि आप लोगों के और कौन कौन से सॉन्ग आप लोग सुन सकते हैं। तो जी ऐसा ही है। और इसके अलावा जो जो मुझे सुन रहे हैं वो जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और बिना इस खौफ से कि हमारा सॉन्ग पता नहीं प्ले होगा या नहीं होगा, जवाब ठीक होगा या नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो न्यू बंदा होगा मैं उसको सॉन्ग वैसे ही प्ले कर दूंगी। जाइए आप लोगों के लिए डील लगाई है मैंने आज। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और सॉन्ग है यार, तो मैं कहती हूँ कि आज वो सॉन्ग सुन लेते हैं। तो जो तक हम एक सॉन्ग सुनते हैं आप मेरे सवाल का जवाब मुझे दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एक सॉन्ग को प्ले और उसके बाद करते हैं बाकी की बात।

0: 11:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Har bar ja nandda kadam ik nayi duniya da vadhan ta, par polio inan kadman ke roke bhi sage tho. Inhiye kare jadhein bhi polio muhim dauran polio workeran ji dastak the ta dar kholyo ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शहर।
5: अभी ॿुधो पिया GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

तो जैसे हम लोग ब्रेक पे जाएंगे और न्यूज ब्रेक पे वैसे ही वापस थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो जब तक आप लोग अगर चाय वाय भी पिए तो जरूर रहेगा आप लोगों ने क्या क्या एक्टिविटी आज करनी है। अच्छा जी, 12 बजे जैसे हम लोग अभी न्यूज से वैसे ही वापस आते हैं तो आपने क्या करना है मुझे टाइमली जरूर बता देना है अपने साथ, क्योंकि आप लोग कोई सॉन्ग वगैरह भी होंगे तो वो मैं इजिली प्ले कर लूँ।

0: धरणनि ऐं हड़तालनि ऐं एहतजाजनि वारियूं ॻाल्हियूं समुझ खां ॿाहिरि आहिनि। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो तक़रीब खे ख़िताब। मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त वॾनि ॾुखियाईनि सां मुआशी इस्तेहकाम हासिल कयो आहे। एहतजाजनि ऐं धरणनि सां मईशत खे नुक़सान पहुचंदो। अहिड़नि हालतुनि में धरणा हणण समुझ खां ॿाहिरि आहे। मुल्क में थींदड़ दहशतगर्दीअ जे पुठियां दुश्मन क़ुवतूं आहिनि। आलमी मार्केट में तेल जो अघु सस्तो थी वियो। पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघ में लाथ जो इम्कान। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल जे अघ में घटिताई रिकॉर्ड कई वई आहे। अमरीकी तेल 1.58% घटिताईअ खां पोइ $100 फी बेरल थी वियो। बरतानवी तेल $103 ऐं इमारती तेल $117 फी बेरल थी वियो। यमन खां हूसी बागियुनि जा हिकु भेरो ॿीहर सऊदी अरब ते मिज़ाइल हमला। रियाज़ ते बैलिस्टिक मिज़ाइल जो हमिलो नाकाम। सऊदी इतिहाद जो चवण आहे त ताइफ, बेश, फुरसान ऐं ॿियनि शहरनि ते मिज़ाइल ऐं ड्रोन हमला आया विया। हूसी बागियुनि शहरी इलाइक़नि खे निशानो बणाइण जी कोशिश कई। रियाज़ ते फायर कयल बैलिस्टिक मिज़ाइल खे हदफ ते पहुचण खां अॻु तबाह कयो वियो। तुर्किया हूसी बागियुनि ख़िलाफ़ सऊदी अरब जे मदद ते गौर वीचार शुरू करे छडि॒यो। तुर्किया परडे॒ही वज़ीर हाकान फिदान चयो आहे त हूसी बागियुनि जे हमले ख़िलाफ़ सऊदी अरब जी मदद कंदासीं। मक्का मुआहिदे तहत पाकिस्तान सां गॾिजी सऊदी अरब जे फ़ौजी ज़रूरतुनि जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। यमन जंग ख़तम करण लाइ सभिनी धुरियुनि ताईं तजवीज़ूं पहुचाए छडि॒यूं आहिनि। सऊदीअ खे ईरान अमरीका जंग जो हिसो क़बूलण जोॻो न आहे। विच ओभर जो बोहरान हाणे मुआशी तौर बि नाक़ाबिले क़बूल बणिजी चुको आहे। शिकत आणण वारो माहौल हाणे ख़तम थियण घुर्जे। यमन जे ॾाखणे इलाइक़े में सरकारी फ़ौज जो हूसी बागियुनि ते हमिलो। घटि में घटि 48 ॼणा मारिजी विया, केतिरा ई ज़ख़्मी। हूसिन बे 31 यमनी फ़ौजियुनि खे मारण जी दावा। परडे॒ही ख़ाबरू इदारे मूजिबि यमनी सरकारी फ़ौज जे हमले में 48 खां वधीक हूसी मारिजी विया आहिनि, जड॒हिं त हूसिन बे 31 यमनी फ़ौजियुनि खे मारण जी दावा कई आहे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी मोहसन रज़ाई चयो आहे त कतर ऐं पाकिस्तानी ट्राकड़ी कंदड़नि सां मुशावरत जारी आहे। ईरान अमरीका सां ॻाल्हियुनि लाइ पंहिंजा शर्त उन्हनि ताईं पहुचाए छॾिया आहिनि। अरब मीडिया खे इंटरव्यू ॾींदे मोहसन रज़ाई चयो त ईरान फैसलाती जंग लाइ तयार आहे। ट्रंप जे धमकियुनि जो को बि नतीजो न निकरंदो। नेतन्याहू जी भड़कायल जंग मां निकरण लाइ ईरान जा शर्त मञण वाशिंगटन जे मफ़ाद में हूंदो। भिरिया रोड में पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में मुसलसिल वाधि ऐं महांगाई ख़िलाफ़ एहतजाज। आल टैक्सी ड्राइवर इताद ऐं शहरनि पारां रेलवे स्टेशन वटि एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो। मुज़ाहिरनि सख़्त नारेबाज़ी कंदे चयो त वफ़ाक़ी सरकार रोज़ पेट्रोल जा अघ वधाए रही आहे, जंहिं सबबि ग़रीब अवाम बुखुनि ते पहुची वियो आहे। पेट्रोल सां गॾु हर शइ महांगी थी वई आहे। हुकूमत अवाम जे हाल ते रहम करे तेल जे अघनि में लाथ करे। खेरपुर में स्कारप खाते जे नाल ये सबब सिम नाले जा कपर टुटी पिया। पाणी ॻोठ में काहे पियो। केतिरनि एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि। ॻोठ नारू ढोरो वटि सिम नाले जा कपर टुटण करे ॻोठ नारू ढोरो में दाख़िल। वण कमंद भाॼियूं केलनि जा बाग पाणी हेठि अची विया। लखे रुपियनि जो नुक़सान। थाणो बुला खान में नूरियाबाद जे सनअती ज़ोन में क़ाइम फैक्ट्री अंदर नौजवान पोरियत फोत टवालनि जी फैक्ट्रीअ में कम दौरान खिपरो वासी सलाम अलाह राजड़ मशीन में विचड़ी फोत थी वियो। इतलाह ते वारस पहुची फोती पोरियत जो मड़ बिना कार्रवाईअ जे ॻोठ खणाए विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: धर माशुम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो निवी दुनिया पलोर रवानवी। खुद पोलियो रंज दा कदमुना द्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
4: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو.

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
5: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज.
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो.
7: बोलते हैं तो आवाज जो है ना वीक की आती है. आपने वो बताना था मुझे, अभी तक देखते हैं कि किस किसने हमें जवाब दिया है और किसने हमें जवाब नहीं दिया. यहाँ पर टाइम वैसे ही सवा 12 हो चुके हैं. तो यहाँ पर देखते हैं हमारे साथ मौजूद हैं इंतजार अली. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. हाय सिस्टर, आई एम इंतजार अली कुरैशी फ्रॉम राजस्थान. आज इतना आपका शो बड़ा जबरदस्त है. थैंक यू सो मच इंतजार अली. कैसे हैं आप और कहाँ से आपने मुझे ज्वाइन किया है लाड़काना से? तो जी बहुत खुशी हुई आज से. हम यकीन है कि आप लोग भी आप मुझे ज्वाइन किया करेंगे. संडे संडे रहती हूँ आपके साथ पूरे दो घंटे के लिए, सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका. मेरे साथ आओ बात करेंगे. लेकिन आप नेक्स्ट संडे भी मेरे साथ जरूर होंगे इंशाल्लाह. इंतजार रहेगा आपका भी. और इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं कि मैं बता देती हूँ कि भाई किसका जवाब बिल्कुल ठीक था और किसका नहीं. वो भी मैं ऐसे नहीं बताऊंगी कि कैसे, मतलब कि जैसे मैं बताती हूँ वैसे नहीं बताऊंगी ना, आपको पता है. और जी अब्दुल रजाक ने मुझे सवाल का जवाब दिया था और कहते हैं कि सवाल का जवाब जो था ना वो है वंश आवाज. जैसे कि आपको पता है कि लिखने में तो ओ से जाता है, लेकिन जब उसको बोलते हैं तो वो वी की आवाज निकल जाती है. तो बिल्कुल ऐसे ही है. और इसके अलावा हमारे पास जवाब दिया था हमें मजरूर अहमद ने. वो कहते हैं कि लिखने में अगर लिखें तो वन ओ से जाता है ओ एन ई वन, और अगर बोलेंगे तो वी के हिसाब से वो आवाज निकलती है वन. और अगर ऐसे ही सिमिलर आप लफ्ज देखें तो वंस. जी बिल्कुल ये ठीक आंसर है इसके. मैंने आपको देखो आज आंसर भी बता दिए हैं और सॉन्ग प्ले करूंगी जल्द की बातें. और लेकिन अब्दुल रजाक ने सॉन्ग का कहा था कि सॉन्ग है तुम जो यादों ही है. अच्छा जी जरूर जरूर हम आपको सॉन्ग भी जरूर प्ले करेंगे. और इसके अलावा हमारे पास एक और सॉन्ग भी है वो भी हम प्ले करेंगे जरूर. और अच्छा जेपल ने जो मुझे सॉन्ग कहा था ना वो मैंने प्ले प्ले नहीं किया. हम राजी सॉन्ग कहा था उन्होंने. ओके जी पर मर्जी सॉन्ग है हमारे पास चाहिए हम लोग जरूर प्ले करेंगे. ये मैं चाहती हूँ कि हम राजी हम लास्ट में प्ले करें क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सॉन्ग, तो हम इसको लास्ट में प्ले करते हैं. और अभी एक और सॉन्ग है जो हम प्ले करने लगे हैं, सुनते हैं सॉन्ग को भी साथ में. और ये है तुफैल खान संजरानी का, जो कि मसरूर अहमद ने जो हमें राइट आंसर दिया था. सॉन्ग का सवाल नाम उन्होंने नहीं बताया था मुझे, क्योंकि जो उन्होंने मुझे कहा था कि फैज अली की आवाज में अगर आप मेरे जवाब ठीक होता है फैज अली की आवाज में सॉन्ग प्ले कर दिया, लेकिन फैज अली की आवाज में हम एक सॉन्ग प्ले कर चुके हैं ऑलरेडी. तो यह मैं अपने पसंद उनको सॉन्ग सुना रही हूँ. तो फैल खान संजवानी के बाद में सॉन्ग हम प्ले करते हैं मसूद अहमद के जवाब ठीक देने पर. तो सुनते हैं सॉन्ग को भी करते हैं एंजॉय.

0: सिंध की
1: ची पसी है बन के मोहब्बत का सास जीए एफएम की आवाज
0: जीए एफएम नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: कर दिया है मैंने सॉन्ग को प्ले और सॉन्ग को सुनते हैं साथ में एंजॉय करते हैं मेरे तो साथ और सॉन्ग को एंजॉय करते हैं उसके बाद मैं करूंगी फरमाइशी सॉन्ग प्ले जो कि मुझे फरमाइशी सॉन्ग प्ले करना था याद होगा आप लोगों को। अच्छा इसके अलावा अगर आप लोग कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो वो भी मुझे जरूर बताना। चलिए कोई बात नहीं, तो सवाल खत्म हो चुका है, सेगमेंट हमारा वैसे ही खत्म हो चुका है तो क्वेश्चन मेरा खत्म है। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और सॉन्ग सुनना चाहते हैं वो जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन अभी हम इस सॉन्ग को कर दिया प्ले, करते हैं मेरी पसंद के सॉन्ग को भी एंजॉय।
1: Kashmir Beats, Singing with the Stars, Season 1.

0: और उसके बाद आके मैं अपने आपको पोएट्री बताऊंगी और उसके बाद हम चलाएंगे फॉर्मेटी सॉन्ग, उसके बाद करेंगे लाइफ का टाइम वैसे ही रहेगा तो लाइफ कर देंगे और अभी टाइम होता है छोटे से शो को मुझे ब्रेक की तरफ जाने का। वही कम सबको इंजॉयगा नहीं करते हैं इंजॉय बाकी की बातों को।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: Duniya ke zyadatar mumalik se polio ka khatma ho chuka hai. Sirf do mulk rehte hain jahan ye virus abhi tak bachchon ka mehfooz mustaqbil chheen raha hai. Aur badkismati se hamara mulk bhi in do mumalik mein shamil hai. Ab zimmedari hum sab ki hai. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: बैंक इस्लामी लाया, पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे
5: सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो।

शुक्रिया है मेरे उन सबको बर्थडेज और स्पेशली जो की थी डेडिकेट करती हूँ मैं अपनी बर्थडेज और स्पेशली जो की थी और

और सलाम आपको बताऊं कि जी और क्या बोलते हैं, अभी हम लोग यहाँ एक सॉन्ग प्ले करेंगे और जो जयपल की फरमाइश पर था ये सॉन्ग और मेरे कहा था लास्ट प्ले करके जी रखना है अपना, आप लोगों ने अपना बहुत सारा किया। अच्छा आज के सेगमेंट में बहुत सारे लोग मेरे साथ न्यू लिस्टर्स मौजूद थे जी, बहुत खुशी हुई आप लोग जो मेरे साथ आज फर्स्ट टाइम आए थे। तो जरूर आप लोगों ने क्या करना है, हर इतवार को मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी सुबह 11 से 1 बजे रहता है आपका मेरा साथ पूरे 2 घंटे के लिए, हर इतवार रहेगा। अब आप लोगों का इंतजार भी मुझे जो न्यू लिस्टर्स थे मेरे आज के, तो जी मेरे सवाल सुनने के साथ मुझे जवाब भी जरूर दीजिएगा। और जब तक लिए अल्लाह हाफिज है और जब तक अपना रखना है बहुत सारा ख्याल मुझे भी दुआ में रखना है, मेरी भी दुआ में हमेशा आप लोग रहते हैं। तो ऐसे ही है जी, और यहाँ पर अभी हम एक सॉन्ग को प्ले करेंगे जो कि जयपल की फरमाइश पर है, तो इस सॉन्ग को भी इंजॉय करेंगे साथ में और उसके बाद जाएंगे अपने अपने घर, बल्कि मैं तो अपने घर जाऊंगी, आप लोग तो अपने घर पर ही बैठे हैं। ओके जी, और कुछ ड्राइविंग कर रहा है, अल्लाह तला से दुआ है कि वो हमेशा की तरह मतलब अल्लाह ताला उनको सेफ सफर मतलब अदा करने की तौफीक अता फरमाए कि वो अपने घर पर आसानी से पहुंच जाए। जो रास्ते में है भाई, पैदल चल रहे हैं, बाइक पर चल रहे हैं, कार पर चल रहे हैं, जो भी है, और उसके अलावा जो घर में बैठा है, अल्लाह ताला उनको मतलब उनकी परेशानी को खत्म करे। आप सबके लिए दुआ मेरे साथ, मेरी दुआ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी कि मैं मेरे दिल में हमेशा आप लोगों की दुआ रहती है, तो ऐसे ही आप लोग भी अपने दिल में मेरे लिए दुआ रखिएगा और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक अगले सेगमेंट नए सवाल के साथ, तो ज्यादा रखना अपना बहुत सारा ख्याल दीजिए। मैं यहाँ पर कर दिया है सॉन्ग को प्ले और ये है हम राजी सॉन्ग, हिस्ट्री है, ये है ड्रामा रूपोश का ये जो है और सॉन्ग है, उसको मैंने कर दिया है प्ले और ये सुनेंगे हम लोग।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
0: ये yeah!

0: है अपना घर और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 PM. This time check is brought to you by
3: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News,
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

0: मुल्क के रोजानो 120 अरब रुपये जो नुकसान थींदो। धरना पाण खे तकलीफ़ पहुचाइण वारी ॻाल्हि हूंदी। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब। मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त वॾियुनि ॾुखियाईनि सां मुआशी इस्तेहकाम हासिल कयो आहे। एहतजाजनि ऐं धरणनि सां मईशत खे नुक़सान पहुचंदो। अहिड़ियुनि हालतुनि में धरणा समुझ खां ॿाहिरि आहे। मेडिकल ऐं डेंटल कॉलेजिस में दाख़िला लाइ एमडीकेट टेस्ट शुरू थी वई। सिंध जे 34,235 उमेदवारनि समेत मजमूई तौर ते 138,160 उमेदवार टेस्ट में हिसो वठी रहिया आहिनि। पंजाब में 49,199, खेबर पख्तूनख्वा में 38,841, बलोचिस्तान में 9,923, आज़ाद कश्मीर में 2,761, गिलगित बल्तिस्तान में 1,721, इस्लामाबाद में 1,245 ऐं हिकु आलमी मर्कज़ रियाज़ में 237 उमेदवार टेस्ट ॾींदा। जॾहिं त कराची, हैदराबाद, जामछुरो, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काणो ऐं सखर समेत 8 सेंटर लाइ कमेटियूं क़ाइम कयूं वयूं आहिनि। पीएमडीसी ॼाणायो आहे त हर धार सुवालनामा तयार कया विया आहिनि। इम्तिहान लाइ हर पर्चे में 180 सुवाल शामिल हूंदा। आईबीए सखर जो वाइस चांसलर डॉक्टर आसिफ शेख इम्तिहानी सेंटर जे दौरे दौरान सख़्त गर्मीअ सबबि बेहोश थी वियो। कलात वेझो सिक्योरिटी फोर्सिस जो ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द मारिजी विया, 23 मुगवी बाज़ियाब। आईएसपीआर मूजिब 18 ऐं 19 सेप्टेम्बर जे विच वारी राति दहशतगर्दनि N25 ते चौकी क़ाइम कई हुई। दहशतगर्दनि जो शहरनि खे अगवा करण, भतो वठण ऐं गाॾियूं फुरकण जो मनसूबो हो। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे नापाक इरादा नाकाम बणाए छॾिया। फायरिंग जी ॾे वठ में 5 दहशतगर्द मारिजी विया, 23 मुगवीनि खे बाज़ियाब करायो वियो, जॾहिं त दहशतगर्दनि जे कब्ज़े मां वॾे अंग में हथियार हथ। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी अॼु ईरान दौरे ते रवानो थींदो। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान मोहम्मद इस्माइल बकाई चयो आहे त मोहसिन नक़वी जो ईरान जो दौरो ॿतरफ़े लाॻापन ते ॿधल हूंदो। मोहसिन नक़वी जे ईरान दौरे बाबति कंहिं बि अमरीकी पैगाम जी ख़बर न आहे। वॾे वज़ीर सिहत मुराद अली शाह जी सदारत हेठि तालीमी इंतज़ामनि बाबति इजलास। तालीम वारो वज़ीर सरदार शाह, चीफ सेक्रेटरी ऐं ॿिया अमलदार शरीफ़। वॾे वज़ीर पारां ॿीहर तामीर थियल स्कूलनि में दाख़िला मुहिम शुरू करण जी हिदायत। सिहत मुराद अली शाह चयो त सिंध में 838 नवनि स्कूलनि जी तामीर मुकमल थियण वारी आहे। नवनि स्कूलनि सां लॻभॻ 2.5 लख ॿारनि लाइ तालीमी मौक़ा पैदा थींदा। आलमी मार्केट में तेल जो अघु सस्तो थी वियो। पेट्रोल ऐं डीज़ल जे अघ में लात जो इम्कान। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल जी अघ में घटिताई रिकॉर्ड कई वई आहे। अमरीकी तेल 1.58% घटिताई खां पोइ $100 फी बैरल थी वियो। बरतानवी तेल $103 ऐं इमारती तेल $117 फी बैरल थी वियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी। हाणे अव्हां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ऐं इलाज होम्योपैथिक तरीक़े सां कंदा आहिनि। अलहमदुलिल्लाह केतिरा ई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अव्हां बि हिकु दफ़ो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ़ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां ख़मीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़ें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

क्या मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM88.8 हमारा पेज है जनाब, अगर आप सर्च करते तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है और पेज पर आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। ओके जी, तो जल्दी जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाए, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई वाकई आप हमारी पोस्ट से कितनी ज्यादा मोहब्बतें करते हैं। वैसे तो कमेंट्स तो आप कर देते हैं वो तो जरूरी होता है, लेकिन पोस्ट को लाइक और शेयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और मुझे बताइए आप हमारे साथ मौजूद एक प्रोग्राम का हिस्सा है और टॉपिक को फॉलो कीजिएगा। ओके जी, तो टॉपिक जरा दोबारा से रिपीट करते हैं आप लोगों के लिए। हाँ जी, टॉपिक मैंने ये पूछा कि आप मुझे बताएंगे एक कमरे में 10 मोमबत्तियां जल रही हैं, ठीक है, हवा से 2 बुझ गई, सुबह आप उठेंगे देखेंगे तो कितनी मोमबत्तियां बची होंगी वहां पर। ओके जी, तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम किस किसने इस्तेमाल करके देखी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के जो यूजर्स है ना वो माशाल्लाह बड़े सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, क्योंकि उनको पता है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम कितनी कमाल की प्रोडक्ट है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं तो उसके लिए जल्दी से आपने क्या करना है, आपने नंबर्स के ऊपर रब्ता करना होता है, क्योंकि नंबर्स के ऊपर जैसे ही आप रब्ता करेंगे ना तो उससे सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी जो भी आप मालूमात उनसे लेना चाहते कि भाई साहब प्राइस क्या होगी या फिर हम कहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, ये तमाम बातें भी आप उनसे नॉर्मली पूछ सकते हैं और वो आपको बता देंगे कि भाई आपने क्या करना है और कैसे करना है। ओके जनाब, तो जल्दी जल्दी से आपने डायल करना है 03-12-50-25-907 बड़ी 312-50-25 970 आई बियो नंबर आहे 03-27-38-43-09 बड़ी 32-73-84-309 ही नंबर साइन जिनते तमा रातो करे आराम सा पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के आई डी स्किन जे फेस वॉश के अवेलेबल कराए सगो था। ही वो प्रोडक्ट मार्केट में आए जनाब, अगर तमा इस्तेमाल करण चाहियो था तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा के मिले पई, डी स्किन जो फेस वॉश तमा के मिले पियो। ओके जी, तो इन दोनों प्रोडक्ट्स को आपने परचेज करना है और उसके बाद इस्तेमाल करना है ताकि आपको भी पता चले कि भाई जान डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कितने कमाल के रिजल्ट्स हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से खूबसूरती का ख्याल रखते जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करते जाइए। ओके जी, तो जितने भी प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और जरा बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम अगर पोस्ट पर आते हैं तो यहाँ पर कासिर खान हमारे साथ मौजूद है, कहते हाय हेलो, और फरवा कहती है वालेकुम सलाम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे, आप कैसी हैं आप, मैं ठीक हूं जी आप बताएं, और मोहम्मद अली हमारे साथ है, अजीम एके हमारे साथ है, ओके जी ओके बहुत शुक्रिया आपका भी, और बरकत नमादारी जमाली बलोच हमारे साथ है, आप हमें बलोचिस्तान से सुन रहे हैं, भाई को खुशामदीद कहते हैं। अच्छा फरवा लिखती हैं, आप ही अर्ज किया है चले आओ मेरे हमदम मेरी दुनिया अधूरी है, हुजूम में दर्द से थक कर तुझे दिल ने पुकारा है, क्या बात है जी, बढ़िया हो गया ये तो। अच्छा फहीम भाई हमारे साथ कहते कुछ यादों असांजू याद रख जा, कुछ गालियों असांजू याद रख जा, असा गड हुजू न हुजू कुछ पल गड रहियासी उ याद रख जा। वालेकुम अस्सलाम इन मौलाई इस्लाम अदद, अच्छा छा लाही खुश आयो सफा चा को स्लेट कलम मस्जिद दबी, असा भी अची वयासी प्रोग्राम ते लाजवाब आए हमेशा जिया आवा आवांगे, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, आई ठीक ठाक आयो तवा बुधायो पांजा हाल आवाज, अन के अलावा इंतजार अली हमारे साथ, इंतजार अली वालेकुम अस्सलाम, और कहती असा भी अची वयासी तवा जे प्यारे शो में, तवा जो शो डाडो सुठो आहे, थैंक यू जी थैंक यू, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिएगा। और मोहम्मद नीरन जिकराणी भाई हमें सुन रहे हैं, जेका बाबा से बहुत शुक्रिया, इमरान खान रुख हमें सुन रहे, नाइस यू थैंक यू इमरान भाई। अच्छा हजार खान भाई आ चुके हैं, हजार खान जतोई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिस्टर हाउ आर यू, गुड शो थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई, इंतजार भाई कहते अदा तुम्हारा शो लाइक एंड शेयर करे छो आई थैंक यू। अच्छा शीजा की निदली हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम प्यारी आजी वेलकम टू शो, तबियत कैसी है मूड कैसा है, तबियत बस ठीक ठाक ही है और मूड भी बस ठीक ठाक ही है। और वजीर हमारे साथ है, वजीर भाई हमें ठट्टा से सुन रहे हैं, डॉक्टर वजीर अली कहते नाइस यो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहा जाता है। और साथ ही साथ मोहम्मद अली हमें सुन रहे हैं, बाजी सिद्रा अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा फहीम भाई आपने टॉपिक

0: जवाब दिया। ठीक है जी, निदली ने भी टॉपिक का जवाब बता दिया, क्या बात है। असमत हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम असमत। और अनवर भाई हमें सुन रहे थे, अस्सलाम वालेकुम से सी गानो जरूर बुधायो। बिल्कुल भामा कोशिश क्या थी तमाम भाईरन जो पसंद जी की फरमाइशू आए उन्हें हलाइंदासी प्रोग्राम में, पर तमाम पोस्ट के जरा लाइक एंड शेयर करना हलजो। मुख्य बुधायो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के कहीं कहीं परचेज करे वरतो आए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम केयर के इस्तेमाल करे पो। दर्द दिल कहती है अस्सलाम वालेकुम डियर फेवरेट आरजे चंदा जानी, आप कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक, अगर चोर ना ले गए हो तो 10 ही बचेंगे, 10 कैसे बचेंगे बताएं मुझे। मधुरी कहती है कि वैसे उस दिन मेरा वाला ओएसटी प्ले किया था, हाँ जी बिल्कुल किया था मैंने 5 बजे वाले प्रोग्राम में। सालार सिकंदर हमें सुन रहे हैं, सालार सिकंदर आपको वेलकम हो गया। दर्द दिल ने भी टॉपिक का जवाब दिया है, बढ़िया हो गया जी। असमत लिखते हैं कि सिस्टर अस्सलाम वालेकुम, मैं राइटर असमत मेमन खैरपुर मीरज से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। खैरपुर वाले लोगों के लिए भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम है जनाब, आप खैरपुर में कहीं भी किसी भी करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाएंगे तो आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी। इतनी प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं कि जब आप परचेज करेंगे ना तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का यूज करते रहिएगा ताकि आपको पता चले कि आप अपनी खूबसूरती में किस तरह से इजाफा हासिल करते जा रहे हैं। तो मर्द हजरात हो गए या फिर खवातीन हो गई, हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकता है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा उठा सकता है। अच्छा दर्द दिल कहती है कि ख्वाब देख रही हूँ कि सच में आई हो, भाई क्या मतलब मैं कोई सालों के बाद आई हूँ। मैं तो रोज ही आती हूँ और दो दो मरतबा आती हूँ, तो बस ये तो आप बातें बोलना बंद ही कर दें। वैसे कल के लिए थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं कि माजरत, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी क्या मतलब बहुत ज्यादा वाली खराब थी, तो इसी वजह से आपको पता है कि अगर मैं, मुझे ना हल्का सा बुखार होता है तभी मैं प्रोग्राम कर रही होती हूँ, लेकिन वो ऐसा था कि पानी सर से ऊपर जा चुका था, बस इसी वजह से थोड़ा सा छुट्टी कर ली थी। बाकी आपको मेरी आवाज से अंदाजा हो ही चुका होगा कि मेरी तबीयत देखी ठीक नहीं है। और तंग मत कीजिए ज्यादा गानों की फरमाइशें कर करके, वरना मेरा पारा हाई हो जाएगा। बस प्रोग्राम सुनती रहिए और पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए। डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बातें कीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम किस किस ने इस्तेमाल करके देखी है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहेंगे ना तो उससे ये फायदा तो हो जाएगा कि भाई आपके लिए आसानी हो जाएगी, बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाएंगे और वहां से जाकर इजीली डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को परचेज कर सकते हैं। अगर ये वाला सीन है कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो मिल रही है लेकिन डी स्किन फेस वॉश अभी आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं हुआ, तो आप वो भी अवेलेबल करा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से नंबर के ऊपर राबता करते रहिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराते रहिए, ठीक हो गया। चलेंगे यहाँ पर टाइम हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए, पूरी पूरी 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, तो यूज कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: This program is brought to you by
4: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
5: Dhar mashum warkoti warkoti ka damuna de yow niwi dunya palur rawanwi. خود پولیو رنز دا قدمونو درولی هم شی نو پا دی وجا دا پولیو دا هر مهم پا محال دا پولیو تیم دا دروازی تکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی دو ساسکی ورکول مهی روی زکا چه هم دا ساسکی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کس زیادوی او دا حقی دا خوبونو الوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
6: हा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
8: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
7: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: बोलो बोलो शीजा।
1: हाँ जी बोलो बोलो डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हाँ जी अच्छा शीजा की निदड़ी हमारे साथ कहती है कि मतलब दोनों ही खराब है, मूड भी और तबीयत भी। अपना ख्याल रखो ना, तुम्हें पता है ना मैं कितना परेशान हो जाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अंदाजा है मुझे। और मोहम्मद राशिद अवान हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम, ससुर सदरा हमेशा खुश रहे आमीन, खूब इंजॉय कर रहे हैं आपका प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया भाई जी आपकी मोहब्बतें होती हैं। चाचा खालिद हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम बेटा सिजो, हाउ आर यू, हो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताए चाचा कैसे हैं। और कहते हैं अब कैसी आपका नहीं नहीं ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर काफी। हजार भाई कहते हैं कि हवा से अच्छा सही है जी सही है। दर्द दिल कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही है, एक दिन नहीं आई तो हमें एक साल लग रहा है। अल्लाह रे एडो प्यार कंदा अच्छा सच में। अच्छा हिदायतुल्लाह आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम ठीक हो कहते हैं। कॉपी सॉन्ग लाया हूँ मंजूर सेख रानी का, लिंक सेंड कर रहा हूँ। ठीक है जी ठीक है देख लेंगे हम चला भी लेंगे। और रशीद खोसू भाई हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से, वालेकुम अस्सलाम प्यारी भाई को वेलकम कहते हैं। और चाचा खालिद कहते हैं आज आपको तंग नहीं करेंगे वेगी भाईटी, थैंक यू सो मच वेगा चाचा, या बस मोहब्बत बरकरार रखो, बाकी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करता हूँ वैसे ही करो पया। और असमत कहते हैं कि राइटर असमत मेमन की तरफ से आवाज की मलिका अंदाज निराला, सिस्टर के प्रोग्राम ने दिल को संभाला आई लीड़े। अनवर भाई कहते हैं कि टॉपिक अब मैं समझा, अच्छा टॉपिक अब आपको समझ लगा है, सही है जी बढ़िया आपने सही जवाब दिया है टॉपिक के ऊपर। अच्छा असमत लिखते हैं कि सिस्टर जब बोले तो लगता है फूल खिले हो के गुलशन में, जैसे नगमे चले हो एफएम पर, आवाज से जगमगाती है हर शाम अपनी, सुनने वालों के दिलों में दिए जलते हैं। क्या बात है जी क्या बात है क्या बात है, बढ़िया हो गया ये। अच्छा वहीं भाई कहते भाव क्या हुआ था कि तबीयत को, बस ये मौसम चेंज हो रहा है तो उस वजह से सारे लोग ही बीमार हो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है, वरना तो मैं बहुत कम ही बीमार होती हूँ, क्योंकि जो अपना ख्याल रखते हैं वो कम ही बीमार होते हैं, तो ख्याल तो बहुत ज्यादा रखती हूँ लेकिन ऐसा है कि मौसम अगर चेंज हो जाता है तो इंसान ही जरा समझ गए होंगे। अच्छा हजार भाई जान लिखते हैं कि सिस्टर मैं तो तरस गया हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम के लिए, क्यों आपके यहाँ नहीं मिल रही क्या डी स्किन ब्यूटी क्रीम, कहाँ रहते हैं आप बताएं तो। अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं और आपने टॉपिक का जवाब दे दिया है, क्या बात है जी ये तो अच्छी बात है। और अबू हनीफ अलबलोशी हमें सुन रहे हैं कहते आंसर आपने दिया है बहुत बढ़िया जी, आपको भी वेलकम कहते हैं। और हजार भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा सा कमेंट किया है, दुआएं भर भर के दे दी है बहुत शुक्रिया। और बतूल मेमन हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम, आई एम बतूल फ्रॉम कांदड़ो सिटी से मटियारी स्टेशन से आपका प्रोग्राम अम्मी के साथ सुन रही हूँ, आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन और मटियारी स्टेशन से बहुत अच्छे सॉन्ग चलते हैं, सॉन्ग चलाएं प्लीज अब तेरी याद ओएसडी, चले मैं देखती हूँ अगर प्यारी मुझे मिल गया ये गाना तो आपके लिए हम लाजमी लगा देंगे बतूल, बहुत शुक्रिया।
2: क्या बात है,
1: आपको और आपकी अम्मी दोनों को वेलकम कहते हैं। और आप मुझे ये बताइए मटियारी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मैंने ये चीज जरा नोटिस करी है कि क्योंकि कई मरतबा खवातीन हो या फिर मर्द हजरात हो वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के चक्करों में आ जाते हैं जो भाई उनकी स्किन का बेड़ा गर्क कर देते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी स्किन के लिए कोई अच्छा सा कोई सेफ सा प्रोडक्ट बता दें तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मौजूद है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपके चेहरे पर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक तो ये बात है कि भाई ये मेडिकेटेड फार्मूला है, तो नो टेंशन कि भाई हमारी स्किन खराब हो जाएगी या हम सेंसिटिव स्किन वाले लोग लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, सारी चीजों के लिए मैं तो आपको यस ही बोलूंगी, तो लगाइए दिल खोल के लगाइए और स्किन का सारा ख्याल रखिए, क्योंकि ये आप डिजर्व

gelme şakına. बिल्कुल जी, तो आप मुझे बताएं कहां से सुन रहे हैं आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली या फिर अभी तक नहीं? भाई मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप कर रहे हैं नहीं, मुझे ये भी बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो हमारे साथ यहां पर मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सिदरा में आयशा मेमन हो, आप हमें ठेड़ी से सुन रही है। आयशा मेमन डेली बेसिस पर हमारा प्रोग्राम सुन रही होती है। और आयशा मेमन जो है ना, वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज भी कर रही है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब भी खत्म हो जाती है तो फिर वो दोबारा लेने चली जाती। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके वो इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत और इतनी गोरी गोरी हो चुकी हैं कि सब लोग आयशा से उनकी खूबसूरती का राज जानना चाहते हैं। तो क्या बात है आयशा, आपको वेलकम कहती हैं। आप इतनी प्यार और मोहब्बत और खुलूसी हमारे प्रोग्राम को पसंद करती हैं, बहुत शुक्रिया।

0: मरतबा अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर लेते ही ना, तब तो भाई आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम के दीवाने बन जाएंगे, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम इतनी कमाल की प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करने के बाद ही आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, ये अबू हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि दीवानगी के सिलसिले का हुए जो मुरीद, इस गेसुए दराज सवा पीर ही नहीं। हाँ जी, थोड़ी समझ नहीं आई बात। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। इंतजार कहते हैं कि अदा गानों तो बुधाए जो सब कुछ तो है तेरे नाल, मां दिसां थी तांजा गाना जेके लगी सग्या लिस्ट में सब हणाईंदासीं, ठीक है, ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, पर तव्हां थोड़ो सबर भी कंदा कयो। और चाचा कहते हैं आज कराची में गर्मी बहुत है, गर्मी तो खैर इधर भी है, पता नहीं क्या हो गया, गर्मी दोबारा से वापस आ गई, विच में थोड़ो असांखे होप मिली वियो हुयो त बाबा हाणे सी अची वियो आहे, सियारो अचण वारो आहे, थोरी थोरी ईअं हल्की हल्की थधी थधियूं हवाऊं हुयूं, भला ॾींहं गुज़रनि पिया, भलियूं रातूं गुज़रनि। गर्मी ने बोला इतनी भी जल्दी है क्या, अञा हिते असां हूंदासीं बाबा, तव्हांखे अञा थोरो तड़पाईंदासीं, सो वरी वराए गर्मी अची वई आहे। और ये निदड़ी कहती है कि हमें यहां सर्दी लग रही है, इसका मतलब ये बुखार का जादू है। हां जी, कुछ ऐसा ही सीन है। तो फरवा, आपने टॉपिक का जवाब दिया है, क्या बात है जी, ठीक है। और इकबाल आशारी भाई हमें सुन रहे हैं, आप हमें सुनते हैं जी मीरपुर खास से, क्या बात है, मीरपुर खास में भी आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगा, अगर आपने टॉपिक का भी जवाब दिया है ये भी ठीक है। भाई फहीम के कान जो है ना माशाल्लाह बहुत बड़े हैं, वो ऐसे सेंस कर लेते हैं सारी बातों को। ऐसा है ना फहीम, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये चीज जरा नोटिस करी है। अच्छा, अब्दुल गफार भाई हमारे साथ कहते हैं सलाम खुलूस, वालेकुम अस्सलाम, और आप हमें मेलसी से सुन रहे हैं, मेलसी में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम भाई मिल रही है, आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर चले जाइएगा और मेलसी से आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करनी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मैंने देखा था मेलसी में भी मिल रही है, तो आप जाइएगा और परचेज कीजिएगा, ठीक है अब्दुल गफार भाई। अनवर भाई आपने इतनी लंबी चौड़ी सी शायरी भेज दी है, सो जरा मैं माजरत करूंगी, क्योंकि वैसे ही मैं थोड़ा कम बोल पा रही हूँ आज के प्रोग्राम में, तो इतने लंबे चौड़े मैसेजेस मतलब आज नहीं करें, ठीक है। हिदायतुल्लाह आपने टॉपिक का जवाब दिया है और कहते ही एक भी नहीं बचेगी। हाँ भाई, आपने तो वखरा ही जवाब दे दिया। अच्छा, हजार भाई कहते मेरा जवाब गलत था इसीलिए मैं हंस रहा था। हाँ चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इंसान को अपने ऊपर भी हंसना चाहिए। और इनका अलावा अब्दुल गफार भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, बढ़िया हो गया जी। और ये अबू हनीफ लिखते हैं कि आंसर ओके ओके, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, पोस्ट को लाइक और शेयर कर रहे हैं या फिर नहीं, जल्दी से कीजिए, क्योंकि ये भी आप ही लोगों का काम होता है, तो कीजिए अपना काम, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और नंबर्स के ऊपर रابطہ करते रहिए, जो नंबर आपको बताते हैं, ताकि नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे ना तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना वो अवेलेबल हो जाएगा। तो डी स्किन का फेस वॉश हो या फिर डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो, यूज करते रहिए और खूबसूरत होते रहिए। और हाँ, आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, हर कोई इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि भाई ये सारे प्रोडक्ट्स आप सब लोगों के लिए तैयार किए गए हैं, तो चाहे वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन का फेस वॉश हो, यूज कीजिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए। जी जी, चाचा खालिद आपने टॉपिक का जवाब दिया है जो कि मतलब सही है। अच्छा फरवा कहती है आप ही मुझे शो की स्टार्टिंग में आपकी आवाज से पता चल गया था आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अच्छा, मलिक नजर हमारे साथ कहते हैं, मलिक नजर हुसैन, ओके जी, खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपको वेलकम कहते हैं। अली रजा लगारी हमें सुन रहे हैं, कहते सिस्टर सदरा कैसी हैं, शो तमाम नाई से तमाम एसएमएस प्रोग्राम में शामिल करें, हम आपको एसएमएस करते हैं, आप प्रोग्राम में हमारा एसएमएस शामिल नहीं करती हैं, सिस्टर आप हमको प्रोग्राम में शामिल किया करें। जी जी बिल्कुल, भाई को शामिल प्रोग्राम रखा गया है। और उनका अलावा तां खींचूं था भली करी आया, तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करो, ठीक है। और उनका अलावा हिते टाइम थे बाबा न्यूज ब्रेक वठूं मैं, उनका पोस्ट शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुआ, वापसी जल्दी मोटी तमारी नासी तवां की कार्ड नहीं बिनाए वणणो इते बैठा होचो मां हिया वणी ओ हिया मोटान थे। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
6: Brought to you by
7: Sona Urea Granular. मिट्टी जो मान
8: वफाकी वजीर तातारण चयो आहे त इस्लामाबाद में एहतजाज करण न ॾींदासीं। पीटीआई वारनि खे इस्लामाबाद में किथे बि रस्ता बंदि करण न ॾींदासीं। जमायत इस्लामीअ खे बि सलाह आहे त इस्लामाबाद तरफ़ न अचनि। कानून सभिनी लाइ बराबरि आहे।

कर रही हूँ। अब तो भाई डी स्किन का जो फेस वॉश आ चुका है ना मार्केट में, वो बेसिकली अभी अभी आया है, तो हम ये सोच रहे थे कि भाई डी स्किन का फेस वॉश भी आप यूज कीजिए और फिर हम भी इस्तेमाल करेंगे। नहीं ऐसा है कि पहले क्या पता हम ही इस्तेमाल कर लें, आपको तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे ये लग रहा है, क्योंकि तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएंगे, फिर परचेज करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे, तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस मत बनाइएगा, इसे बस आप आज ही अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। और जो नंबर आपको बता रही हूँ प्रोग्राम के अंदर, उसके पर रابطہ कीजिए और رابطہ करने के फौरन बाद ही उनको बताइए भाई साहब जल्दी कीजिए फटाफट से हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम विद डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करा दे, ताकि हम इस्तेमाल कर सकें और अपनी खूबसूरती को जरा बढ़ा सके। असा भी जरा लश्कारा मारियो बेन माणन जी, असा भी सोना थी वनो, असा जी रंगत में भी इजाफो अच्छी वनी, असा जे चेहरे ते भी ब्लैक हेड्स आहन, व्हाइट हेड्स कल्स आहन, रिंकल्स आहन, या फिर निशानात आहन, या वरी तव्हां जी रंगत थोड़ी सांवरी वही है, चीजों के हटाने चलाने चीजों के खत्म करने लाए बाय बाय करने चलाए तवा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज तो करो पवो बाबा गाल तव सिद्धि। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जो वो मर्द हज़रात भी करा, खवातीन भी करे सकन, यानी कि ही बिन्हीं मानन जो लाए, यानी कि तुम चाहे मर्द हज़रात आयो चाहे तुम खवातीन आयो, तुम हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे सके तो। मेडिकेटेड फार्मूलो है, नो टेंशन का, घबराने की गाल ही कोने का, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बिल्कुल बाबा उन्होंने डॉक्टर्स मिली कर तैयार किया जो तवी स्किन से रिलेटेड दवाओं वगैरह डी नाइन डॉक्टर बिल्कुल हुए डॉक्टर उन्हें मिली करी डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तैयार कर डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तवा के सिर्फ ब रातन के इस्तेमाल का फौरन बाद तवा के भलो रिजल्ट देने स्टार्ट थी वेंदी है। सो ब रातन का फौरन बाद ही तवा के भलो रिजल्ट मिले तो यकीन कर बाबा तमाम कमाल जो प्रोडक्ट है डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करी दिसो पाने करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो। अगर तुम चाहो था बाबा अस अवेलेबल कराने चाहू था सिद्रा बाजी तू नंबर तो बुधाए तो मैं नंबर बुधाया वी नंबर तुम नोट कर वो ठीक है। ओके जी, सो नंबर है 0333-27-38-43-09 बुड़ी 332 73 84 309 आई बियो नंबर आहे 03-12-50-25-907-312-50-907 ही नंबर्स आहिन जेते तमा रातो करे इजीली पाने करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था। फेस वॉश की अगर गाल कई वनी बाबा फेस वॉश के बारे में भी कुछ गाल एडियो है जेके तवा के खबर हुजन जरूरी आहे। कई मरतबा असा इन चीज में भी थोड़ो कंफ्यूज हुंदा था बाबा असा साबुन लगाएन घुर्जे या असा के फेस वॉश लगाएन घुर्जे, कुछ मानू तो वरी ये हुंदो आ जेके घणी ट्रैवल वगैरह कंदा तो उन्हें थोड़ो आसानी थींदी आ भाई असा फेस वॉश लगाएन वारा आयो असा फेस वॉश यूज कंदासी, या काफी मानन जी मतलब चॉइस हुंदी आहे तो तवा जी चॉइस भी डिपेंड करे तो। अगर तुम फेस वॉश वठण जा शौकीन आयो या फेस वॉश तुम घो मतलब सही लगंदो आ पांजी स्किन से लगाने जे लाए तो तुम डी स्किन जो फेस वॉश एक मरतबा मुझे चवण ते लाजमी ट्राई करी दिसो। छो तो बाबा डी स्किन जो फेस वॉश आहे ना इनके सफा मतलब एडवांस तरीके से तैयार कयो आहे, जैसे तुम नॉर्मली कोई भी फेस वॉश यूज कयो हुंदो तो उन जो जिए तुम रिजल्ट मिलो हुंदो नी तुम थोड़ा सेटिस्फाइड हुंदा, पर जदे तुम डी स्किन जो फेस वॉश यूज करी दिसना तुम खबर पंदी बाबा फेस वॉश चेबो शाखी आहे। फेस वॉश एडो जबरदस्त आहे, एतरो क्रीमी फॉर्म में आए इन जो टेक्सचर, इन के अलावा हाइलुरोनिक एसिड सीरम इन के अंदर एड कयो वयो आहे जेको तुम स्किन के अंदर ताई वनी तुम स्किन के डीपली क्लीन कंदो आहे, तुम्हारी स्किन के मॉइस्चराइज कंदो आहे, तुम्हारी स्किन के हाइड्रेट भी रखो है, तो अलग से तुम्हें मॉइस्चराइज करने की जरूरत न पवंदी। या खोड़ सारा अड़ा वेचारा मानू हुआ गोठ वा मानू जिनके खबर न होंगी तो असेंगे स्किन की सही तरीके से केयर क्या करें घुर्जे, तो तुम्हें इलाही सारा प्रोडक्ट परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत न है, बस तुम डी स्किन जो फेस वॉश वी अचो डी स्किन की क्रीम वी अचो, फेस वॉश से पाँच फेस वॉश कंदा रहो, मुंह धोईंदा रहो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अप्लाई कंदा रहो पे चेहरे से, तुम जदि ही बई प्रोडक्ट साथ में इस्तेमाल कंदा तक खबर पवी बाबा वाह जो रिजल्ट अचन स्टार्ट थी हाँ इनफ थी वही, बस कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करो छो तो खूबसूरती तो असा मिली चुकी है। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुए या वही डी स्किन जो फेस वॉश हुए तुम लगे दिसो खूबसूरती जो ख्याल रखन ताजी पानी जिम्मेदारी होंगी है, तो पानी जिम्मेदारी के पूरा करो। हाँ पोस्ट के लाइक एंड शेयर भी कंदा हलो जी असा खोड़ सारे मानन के बुधाए सको तो बाबा मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश हाँ अवेलेबल थी वो है, सो तुम इस्तेमाल कर पाया को भी तुम मुझे बुधाइंदा हलो, तुम्हारा फीडबैक्स असा तमाम इम्पोर्टेंट हूं। We'll be right back.
सो फीडबैक्स ॾींदा हलो ऐं कंहिं कंहिं इस्तेमाल करण खां बाद में कहिड़ो रिज़ल्ट मिलियो आहे तव्हांखे उहो बि तव्हां असां शेयर कंदा कयो। ऐं बाक़ी रही ॻाल्हि अॼु अव्हां खां जेको टॉपिक पुछियो आहे त सवाल जे प्रोग्राम जो बिल्कुलु इहो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो था हिकु कमरे में 10 मोमबतियूं आहिनि जेके हलनि पियूं, ठीकु आहे, यानी कि हू ॿरनि पियूं, उन मां हवा लॻी त 2 मोमबतियूं वेसी वयूं, ठीकु आहे, त बाक़ी तव्हां मूंखे ॿुधायो सुबुह उथी करे तव्हां ॾिसो था त केतिरियूं मोमबतियूं बाक़ी आहिनि कमरे में, बाक़ी आहिनि। करे मूंखे पंहिंजी खिल ईंदी आहे पंहिंजी सिंधी ॻाल्हाइण ते। चलो तव्हां मूंखे ॿुधायो टॉपिक तव्हांखे समुझ में अची वियो हूंदो ऐं हिते असां ॾाढो भलो गानो ॿुधूं था। गानो ॿुधण सां गॾो गॾु तव्हांजा फीडबैक्स आहिनि, तव्हां छा था चओ उहो बि ॾिसूं था, पर जिन अञा ताईं पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर न कयो करे वेठो बाबा थोरो पैसा लॻंदा आहिनि, हिते बि कंजूसियूं कयो था।

हाँ भाई यहाँ गाली मारी सड़ी थी, बाकी बियो ब्यूटी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल करें दोस्तों। अच्छा हितेश ऐसे गढ़ मौजूद है शहर गुलाब लगारी गोठ बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद रिजवान अली रिंद फैजान अली रिंद शहजाद अली रिंद छोटी कुनेन जहरा आपका शो सुन रहे हैं। अल्लाह पाक आपको और आपकी एफएम की टीम को सुनने वालों को खुश रखे, आमीन सुमामीन। क्या बात है, कितनी अच्छे लोग इन देख ले, सबको दुआएं दे रही, बहुत शुक्रिया।

ओके जी गोट मोहम्मद तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू भाई कहते हैं आपका शोबरी नाई से है सलाम आपको जी वालेकुम अस्सलाम आपको और हबीबुल्ला थेबू कहते हैं सॉन्ग बुद्ध राय जो हो सके तो मेरा एक काम करो शाम का एक पहर मेरे नाम करो हाजिर हाजिर हो सकेगा तो यो गानों तांज लाए हलाए बैठू था मीरपुर खास अब्दुल्ला महर भाई हमारे साथ ही वालेकुम असलम कहते बाजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है हाँ जी बिल्कुल डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले लोग बिल्कुल यही कह रहे हैं ये मौजूद है वालेकुम असलम शहर गुलाब लगारी गोट बाशम खान रिंद से शायर गाजी खान रिंद फैजान अली रिंद और शहजाद अली रिंद कहते हैं बाजी जवाब खां पोए ते लगे तो मुख्य तवाजो मैसेज थोड़ा मिसिंग पार्ट थी वो है सो भाजो मोहब्बत हुआ प्रोग्राम बुध पाया थैंक यू वेरी मच

ओके जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आदत बि हली वेंदी सही आहे, तव्हांखे ख़ूबसूरती बि मिली वेंदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ तव्हांजी ख़ूबसूरती लाइ ॾाढो फ़ाइदेमंद साबित रहंदो। और हफ़ीज़ सोलंकी में सुन रहे हैं फ्रॉम मोरो सिटी, कहते हैं फर्स्ट टाइम SMS किया है आपके प्रोग्राम में, वेरी नाइस शो, सलाम टू ऑल लिसनर्स एंड यू, टॉपिक का जवाब है क्या बात है, बढ़िया जी, कहते हैं कि जो ठीक है एक्सप्लेन कर दिया सारा मैसेज। ओके, बहुत शुक्रिया आपको, हम वेलकम कहते हैं हफ़ीज़ सोलंकी भाई। और अंसर हमारे साथ हैं जी, अंसर भाई आपको भी वेलकम हो गया। शहजाद अली राजपेर फ्रॉम बसीरो कहते हैं कि तुम नजरों से दूर हो, आंखों से नहीं, ख्वाबों से दूर हो, ख्यालों से नहीं, तुम दिल से दूर हो के बाद आपका मैसेज ही हमसे दूर हो गया। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। ऐसे आधा मैसेज इंग्लिश में लिखकर आधा उर्दू में लिखेंगे तो ऐसा ही होता है। सो कोशिश क्या करें, या पूरा उर्दू में लिखा करें या पूरा इंग्लिश में लिखा करें, ठीक है। और बहुत शुक्रिया शहजाद भाई आप हमारे साथ हैं। और इरम हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, अल्लाह पाक जल्दी आपको सेहतयाब करे, आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। इरम कहती है यार मेरी भी तबीयत अभी तक थोड़ी सी खराब है, मेरे लिए भी दुआ करो जी, आपके लिए भी ढेर सारी दुआ। और इरम क्या कहती है, अच्छा इतना ही मैसेज था, ठीक है। अच्छा कहती हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब तो मैंने कब का छोड़ दिया, मेरे ख्याल मेरे दूसरा साल स्टार्ट हो गया होगा या तीसरा। और ये मुनव्वर भाई कहते हैं मुनव्वर अली मुगल मीरपुर खासी, हाय बेना लाड़काना में बिरयानी पुलाव या चावल क्या मशहूर है। भाई लाड़काना में तो सारी चीजें ही अच्छी मिलती है, मैं तो एक मतलब फूडी इंसान हूँ, तो मुझसे ये खाने पीने के मामले ज्यादा मत पूछा करें, क्योंकि मेरे पास च्वाइस नहीं होती। मैं कहती हूँ भाई ये भी चीज बड़ी अच्छी मिलती है, ये भी चीज बड़ी अच्छी मिलती है, तो मैं सही से आपको नहीं बता पाऊंगी कि भाई आपने क्या लेना है क्या खाना है। बिरयानी तो मतलब लव है, ऐसा समझ लें, बिरयानी तो मतलब सावा, तो बिरयानी तो कहीं से भी मिल जाए तो हमें अच्छी लगती है। असा एक दफा इतना बिरयानी खाधी से चाहे वाह वाह वाह, अड़ी बिरयानी तो कोई नहीं ठाईन हों, वरी बेहंदा खाईंदा चंदा जी वाह वाह वाह, अड़ी बिरयानी तो कोई नहीं ठाईन हों। सो हमारा ये वाला सीन चल रहा है। बाकी लाड़काना में बिरयानी बहुत सारी जगहों पर अच्छी अच्छी मिलती है, और पुलाव भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा मिलता है। और मुनव्वर भाई कहते हैं मीरपुर खास में सुबह दो, ओके ओके, आपने टॉपिक का जवाब दिया सही, मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बहुत शुक्रिया मुनव्वर भाई, ठीक ठाक है, आप बताएं जरा डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं नहीं, ये भी बताइएगा।

गाना सुने, ये बड़ा ही अच्छा गाना है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद है तो जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। अच्छा, कुछ आप लोगों के कमेंट्स ऊपर चले गए हैं तो जिनके नहीं रीड हो सकेंगे तो जरा समझ जाइएगा। और चाचा, मैंने नई पार्लर का कोई कोर्स वोर्स नहीं किया। और निर्दली कहती है कि शायद बबर का गाना लगाएगा, बिल्कुल लगाई हूँ। और नसीम गुलामदीन भाई हमारे साथ मौजूद है जी, नूरियाबाद से। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाई को। करीम बख्श शर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। सादिकाबाद से आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। हुबदार अली शेख भाई हमें सुन रहे हैं। और मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक है। और आप हमें सखर से सुन रहे हैं, सखर में भी आपको आराम से डे स्किन ब्यूटी क्रीम मिल जाएगी, कहीं से भी जाएंगे तो जाइएगा, परचेज कीजिएगा। वफा शहजाद मक्सी भाई हमें सुन रहे, प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे आज कराची में बबा सर्दी बहुत है। अच्छा अच्छा, ये आप तंज बड़ा अच्छा कर लेते हैं वैसे। बस ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें बोलकर जाइए और सीधा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लेकर आइए, ठीक है। और गुलाब अच्छा गुल हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। नहीं भाई, वो क्या है ना कि मौसम तब्दील हो रहा है तो इस सबको नजला बुखार और जुकाम हो चुका है। और चाचा कहते हैं आपकी ख्वाहिशों को सराहते हुए डी

0: स्किन ब्यूटी क्रीम वालों ने आपको ये आपसे जरा किसने बोला है मुझे बताइएगा, तो क्योंकि एक ने देखा जो ऊपर चला गया था, मैं जब तक उसके पास आती तो वो तब तक प्याला कर चुका था। तो मुझे बताएं जरा ये अफवाह है या ये वैसे ही आपको सही पक्की वाली खबर है? क्योंकि मुझे ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं मिली। और कहते हैं जी हाँ जी बिल्कुल, आप बिल्कुल लगाइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम, आप लोगों के लिए तैयार की गई है। अच्छा दर्दी दिल कहती है कि इससे भी कहीं ज्यादा प्यार है, दुआ है कि मेरी चंदा को, बहुत शुक्रिया मेरी जान, थैंक यू सो मच। फहीम भाई कहते हैं भाऊ असा अवां जो प्रोग्राम शौक सा बुधंदा आयो उन करे, आई नो इन मां इन चीज मां अंदाजो लगाए सकजे तो वाकई तां प्रोग्राम शौक सा बुधंदा आयो। और मोहम्मद जमान भाई कहते हैं बुआ जी वेलकम इन दिस शो, थैंक यू वेरी मच प्यारे मोहम्मद जमान भाई। तालिब मरी भाई हमें सुन रहे हैं, गोट लाल मोहम्मद मरी तालिब मरी, बहुत शुक्रिया भाई आपको भी वेलकम हो गया। और जी फरवा कहती है आज आपको सॉन्ग ही रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, ओके बहुत शुक्रिया थैंक यू। निदरी कहती है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम अच्छी है रे, मैंने यूज की है रे, और आप सभी यूज करो रे, ओके आना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तां भी पाण जेको मान यूज करे सभी के बुधाए था बाबा तां सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करे जे सभी की खबर पे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश है वो केतरो कमाल जो है। अगर तांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल को तां जल्दी जल्दी अवेलेबल कराए वो जो तक नंबर बुधा हुआ प्रोग्राम के अंदर उन नंबर से राबो कजो, कॉल भी करे सको था, तवा मैसेज भी करे सको था, मैसेज कर या कॉल कर उनके बुधा तो बाबा तुम किथा आयो, तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराने चाहो था तो वो जल्दी तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए छा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम डी स्किन जो फेस वॉश तुम्हारे लिए बाबा ट्राई करी दिसो, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, जल्दी मोटी तुम डेटू था तुम्हारे वेठा हो जो ओही मोटू था, सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो।
1: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी, Hemme Diamond Glow Bleach Cream।
3: This program is brought to you by
4: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
5: Har bar ja nandra kadam ik nayi duniya da vadhan ta, par polio inan kadman ke roke bhi sage tho. Inhiya kare jadhe bhi polio muhim dauran polio workran di dastak the ta dar kholyo ae pehenje baran ke polio khan bachao ja ba katra zarur pyaryo chho ta ye katra baran mein mudafti taqat ke vadhain tha ae inan je khwaban ke uddam rehen tha. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
6: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में, डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
8: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
7: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: क्या बात है, प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के चर्चे हो रहे हैं भाईजान, थोड़े से आके खर्चे कराएंगे तो क्या ही हो जाएगा। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपकी खूबसूरती आपको मिल जाए, और ऐसी वाली खूबसूरती जो कि हमेशा आपके चेहरे पर बरकरार रहे। और हमेशा जो हुसन तव्हांखे खपे थो ना, वो तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾियण वारी आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो बाबा, जीअं तव्हांखे ख़बर पए त मार्केट में हाणे भला प्रोडक्ट बि अचणु स्टार्ट थी विया आहिनि। छो त कई मरतबा ईअं बि थींदो आहे त छो त असां वेंदा आहियूं मार्केट त बहुत सारे प्रोडक्ट देकर हम एक तो बात यह है कि भाई परेशान हो जाते हैं त असांखे कहिड़ो प्रोडक्ट वठणो आहे, कहिड़ो प्रोडक्ट वठणु घुर्जे, ॿियो वरी असां दिमाग़ ख़राब दुकानदार करे छॾींदा आहिनि ही वठी वञो, ही भलो अथव, ही भलो अथव। हुननि खे त ज़ाहिरा पंहिंजो माल खपाइणो हूंदो आहे न, पर तव्हांखे सफ़ा पको पह करे वञणो आहे। त तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो ही मतिलब जेको आहे न परचेज़ करणी आहे, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो ही इस्तेमाल करणो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते हलिया वञो, उतां मालूमात वठो। अगरि तव्हां सिटी वञणु पसंदि कयो था त सिटी वेंदासीं, शहर वेंदासीं त वठी ईंदासीं, पोइ तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेको आहे सो वठी सघो था। हर हंध अवेलेबल आहे तकरीबन, पर पोइ बि अगरि ईअं आहे त तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते कोन मिली रही आहे त तव्हांखे जेको नंबर ॿुधायां थो हुन नंबर ते राबितो करे वठो। ऐं राबितो करण खां फौरन बाद ई तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल थी वेंदी बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम। ऐं अगरि तव्हां नंबर अञा ताईं नोट नाहे कयो त तव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर नंबर ॿुधायां थी, नंबर खे नोट करे वठो। ओके जी, नंबर आहे 033-27-38-43-09 बुड़ी 332 73-84-309 ऐं ॿियो नंबर आहे 03-12-50-25-907 बुड़ी 312-50-25-907 ऐं तारिक भाई जो ई नंबर अथव। तारिक भाई सफ़ा ईअं मतिलब मोबाइल ते चढ़ियो वेठो हूंदो अथव, तव्हां जंहिं महिल बि फोन कंदा न तारिक भाई अटेंड करे तव्हांखे चवंदो हलो ॿुधायो बाबा किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल कराइणी आहे, ऐं पोइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे एरिया में मिंट में अवेलेबल थी वेंदी। सो तव्हां राबितो कयो बाबा, ऐं फोन करे उन्हनि खां पुछो हाल अहिवाल वठो किथे किथे अवेलेबल आहे, ऐं हिते हिते फलाणी फलाणी जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या डी स्किन जो फेस वॉश हुजे नथो मिले त तव्हां उन्हनि खां पुछा करायो, उन्हनि खे चओ ठीकु आहे, उन्हनि खे ॾसियो बाबा त किथे किथे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश अवेलेबल कराइणु घुर्जे। ओके जी, सो तव्हां ताईं जिते जिते बि मुंहिंजो आवाज़ वञे पियो, तव्हां सभु माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन ब्यूटी फेस वॉश जो यूस कयो बाबा। ख़ूबसूरती हाणे तव्हांजी तव्हांजे हथनि में आहे छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन जो फेस वॉश हाणे तव्हांजे सफ़ा ग़रीब अची पहुतो आहे। सो तव्हां बि इस्तेमालु कयो, प्रीमियम क्वालिटी जा प्रोडक्ट आहिनि, तव्हां हेॾा मतिलबु पंहिंजी सॼी ज़िंदगी में जेके बि प्रोडक्ट लॻाया हूंदा न उन्हनि खां 10 गुना छा मतिलबु 100 गुना ज़्यादा ई प्रोडक्ट बहितरीन आहिनि, ऐं हिननि खे मेडिकेटेड फार्मूले सां तयारु कयो वियो आहे, ऐं स्किन सां रिलेटेड जेके डॉक्टर्स हूंदा आहिनि उन्हनि मिली करे ई फार्मूलो ईजाद कयो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तव्हां ट्राई करे ॾिसो, तव्हांखे यकीन ॾाढा सुठा ई प्रोडक्ट लॻंदा। सो तव्हां अॼु ई इस्तेमाल करणु स्टार्ट कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे ॿिनि रातिनि जे इस्तेमाल खां फौरन बाद ई रिज़ल्ट ॾींदी छो त हुन जे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट्स आहिनि, ही 2-in-1 फार्मूलो आहे, यानी कि नाइट क्रीम बि आहे तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी अहिड़ो जो ॾिण तव्हां फेशियल करायो, सफ़ा महांगो फेशियल करायो आहे। सो मुनासिब पैसनि में तव्हांखे अगरि को एॾो सुठो प्रोडक्ट मिली रहियो आहे त बाबा को नाशुक्रो हूंदो जेको न कंदो, वञो बाबा परचेज़ कयो, इस्तेमालु कयो ऐं सुहिणा सुहिणा थी अचो।

खान जी जो अच्छा फहीम भाई हिते नंबर सिंधी में हिकु हिकु करे ॿुधाए अदा जीअं ॿुड़ी हिकु ॿ टे चार पंज असांखे 300-400 लिखण न ईंदा आहिनि तव्हां 1-2-4-5 वारो लिखो सही आहे ॿुड़ी 300-400 वारो जेके हूंदा जेके लिखण वारा उहे लिखी वेंदा सही आहे तव्हां 1-2-3-4 वारो लिखो और इन लाइ मां तव्हांखे भई ॿिन्ही तरीक़नि सां ॿुधाए छॾींदी आहियां तव्हां पोस्ट खे लाइक शेयर नायो कंदा तव्हांजो कसूर आहे सो पोस्ट को लाइक शेयर कीजिए और जी हिदायत अल्लाह कहते हैं कि नहीं जाते न आपका शो भी सुनते ही आदत हो गई है अब ना सुने तो मजा नहीं आता अच्छा माना यह गाल हुई सही सही अच्छा रमजान भाई हमें सुन रहे हैं कहते हैं बहन अहमद मुगल का कोई भी गाना आपसे एक वीक से फरमाइश कर रहा हूँ प्ले नहीं भाई मैंने तो अहमद मुगल का आज ही गाना देखा आपकी फरमाइश में तो मैं देखती हूँ टाइम बच गया तो लगा देंगे बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं जी दर्द दिल कहती है कि किसी ने मुझसे पूछा तुम हमेशा हर किसी के लिए क्यों मौजूद होती हो मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि कैसा महसूस होता है जब आपके लिए कोई भी मौजूद न हो अच्छा तो गाल कही दे अच्छा तालिब मरी भाई बहुत शुक्रिया आप बताएं आपके सिटी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर नहीं अच्छा ये पूछ रहे हैं कि भाऊ लाड़काना में चिंगचियों का हवाल बताओ चिंगचियों जो सागोई हाला बाबा चिंगचिन की वरी छा थी हमारा जिगना हराम करेंगे और हजार भाई कहते हैं कि हम भी आपका शो एंजॉय कर रहे हैं सिस्टर बहुत शुक्रिया जी एंजॉय करते रहिए रमजान भाई कहते हैं कि मिटा दी अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि देना खाक में मिलकर गुलो गुलजार बनता है वाह वाह वेरी नाइस वेरी नाइस और कहते हैं कि लप्पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी जिंदगी चम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी वाह वाह वाह वाह वेरी नाइस वेरी नाइस दर्द दिल कहती है कि बस करो चंदा मेरे मुंह में बिरयानी का नाम सुनते ही भाई मुंह में पानी आ गया क्या बात है तमाम भी बिरयानी लवर आयो ना करें भाई रहमान अली शंबानी भाई हमारा शो सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया कहते नाइस योर शो थैंक यू वेरी मच निदली कहती है कि लाड़काना में हाँ जी हाँ जी सभी अच्छे हैं बस ये जो पहली आपने चीज लिखी ना उसको छोड़ के अली रजा लगारी भाई हमें सुन रहे कहते गोठ जाम खान लगारी से अली रजा लगारी सिस्टर वालेकुम अस्सलाम भाई आपने वही मैसेज कॉपी पेस्ट कर दिया थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं और आपको दिल के तांगे रही से वेलकम कहते हैं और आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा और गुलाम मोहम्मद मरी बलोच वालेकुम अस्सलाम सिद्रा बिल्कुल ठीक ठाक है और आप हमारे साथ हैं डॉक्टर कश्यप मरी बलोच फ्रॉम मीरपुर खास ओके डॉक्टर कश्यप मरी को हम दिल से वेलकम कहते कहते हैं शो बेस्ट सिद्रा जानी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कश्यप अच्छा मुगल उमरानी भाइयों में सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया स्टिकर्स भेज दिए हैं और कामरेड मोला बख्श हमारे साथ हैं कहते हैं माशाल्लाह शो थैंक यू जी और अबू हनीफ अलबलोची लिखते हैं कि मैम आपका प्रोग्राम बहुत नाइस है दो घंटे ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कोई गम है ही नहीं हाँ बाबा हाँ सही था जो दुनिया में गम किथे आहे नहीं अजायो माण्हुनि एॾो मतलब मथे ते खयो आहे ॾुखनि खे नाहे बाबा कुझु भी ना है पानी जिंदगी में चिल रहो रिलैक्स रहो आई मूड के सफाई हैप्पी शेपी रखो कुछ भी ना है खिल भोग में जिंदगी गुजारियो बाबा चार डी जिंदगी लगे तो बनियो गुजरी वया बाकी बनियो बचाए सो एंजॉय कयो एंड डे स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो

क्या बात है, दर्द दिल कहती है कि जब तुम आ जाती हो चंदा शो करने। हाँ हाँ, मैं तो आ ही गई हूँ, लेकिन अब आप बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके घरों में कब तक आ जाएगी। हाँ भाई, तो बिन हयाती अजाब हुआ, पर कई भी माण्हू केतिरो पंहिंजे सिर ते सवार न कयो, हिन खां बिना हयाती सफ़ाई अज़ाब लॻे थो बाबा। खोड़ चीज़ूं आहिनि मोहबत के सिवा, और बि बहुत चीज़े आहिनि भई दुनिया में। अनवर भाई हमारे साथ, अनवर भाई थैंक यू सो मच। फरवा, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। हज़ार रुपए कहते हैं सिस्टर, आज आपका शो लाजवाब, जबरदस्त और बेहतरीन था, मजा आ गया शो सुन के, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और अली रजा लगारी भाई, आपको भी प्रोग्राम हमारा पसंद आ गया है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गोठ जाम खान लगारी में तवाजे लाइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले थी, कौन अली रसा भा मुखे बुधाए जो, जैसा खबर पई तो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम हर जगह ते मिली रही है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल तवाजी खूबसूरती के बधाए छी, तवाजी जिंदगी के चेंज कर छी, छो तो हाँ मार्केट में एडा भला भला प्रोडक्ट अचन था, तवे इन चीज जो शायद अंदाजो न हों, तवा जडी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कदा, तवे खबर पेजी वी डी स्किन ब्यूटी क्रीम वाह जो प्रोडक्ट है।

0: sigo carece.
1: Dukhane jo maaz mein baar tha.
0: Acha nazar momand beti bhai walekum assalam chala tanu khushayo safa. मोबतुआन बाबा प्रोग्राम के पसंद कयो पया मोमन जमान भाई ये दे अरे हाँ बाबा डी स्किन ब्यूरे क्रीम का वन फुल ड्रम परचेज कर रखा हुआ है कमरे की साइड में घर आने जाने वालों को कहा है कि यहाँ से डुबकी मार के जाया करो मुख्य लगल सहकर के डबी उन्हें ईंदा हूं बाबा ये खड़ी वनो खड़ी वनो पर उन्होंने टुबो जारायो था सही है यो भी सही अच्छा ये हमारे साथी जी फहद बलोच भाई वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसे ठीक ठाक है मजे में है और चाचा कहते हैं लास्ट सैडी लिंक शाम 5 बजे वाले शो में आओगी आप हाँ बिल्कुल इन में आई हैं तो नवे और फहद भाई कहते काफी टाइम के बाद आज आपका शो सुन रहा हूँ शामिल हो रहा हूँ आप इस इधर थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई रोज ही आया करें ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करें नहीं बताएं तो

0: नहीं फहीम भाई, वो डर डर के नहीं, बस ऐसा है कि थोड़ा गला खराब है ना, तो उस वजह से वो आपको ऐसा लग रहा होगा। बाकी सब फर्स्ट क्लास
1: है।
0: वरी चंदा असांखे 1 2 3 4 भी लिखना नहीं आता। अरे बाबा, बाकी छा ईंदो अथव लिखण? अच्छा कॉमेंट लिखण ईंदो अथव। सही सही। देश की ब्यूटी क्रीम लिखण ईंदी अथव? मूंखे लिखी त ॾेखारियो, ॾिसां तव्हांखे अचे थो लिखण। और नज़र मोहम्मद भट्टी भाई कहते हैं शमन जो गानो, शमन जो गानो तव्हांखे ॿुधरायूं था, थोरो सबर कयो। सिकंदर अली कहते हैं कि सिस्टर जो बाबा शायदि हले तो ॿुधोसि।

करे माशाल्लाह ऐसे ही ठीक ठाक रहे, खुश बाश रहे और हमारे साथ रहे। एलम कहते हैं कि यार आपने थर्सडे को शाम वाले शो में बताया। हाँ ना तभी से बस सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया हमारा। और ये मुन्नावर भाई कहते हैं कि बेना भाई ये आपने कैसी बात कह दी, उनको तो हमारा प्रोग्राम नहीं अच्छा लगता। सच में ये देखकर मुझे बड़ी

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 3 PM. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जरूर प्यारो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफ़ती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था।
1: अब आपकी खूबसूरती का सर

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए।
3: कराची में सुपर हाईवे भरसा घर में पंज घर भाती जा लाश हथ पुलिस जो चवण है तो एहसन आबाद में फ्लैट में पंज घर भाती जा लाश मिलिया ज़ाल मुड़स ए टिन बारन जा केतरा ही डी पुराना लाश मिलिया जांच कई पई वे। लाहौर पुलिस पीटीआई बानी की भेण अलीमा खान के गिरफ्तार करे वरतो। अलीमा खान के खानदान जरिये मूजब अलीमा खान के लाहौर के अरपा मालवारे घर में गिरफ्तार कई वो है। अलीमा खान के गिरफ्तार करे कोट लखपत जेल मुंतकिल कई वो। पीटीआई बानी जो जेल में तिबी मुआइनो जरिये मूजब बानी की ब्लड प्रेशर ए रत की चकास कई वही। मेडिकल टीम में शिफा आई अस्पताल ए पिम्स अस्पताल जा डॉक्टर शामिल हुआ। बिजली खरीद न कंदी बिजली पे

पेट्रोल अघनि में अवाम खे रिलीफ ॾेई रहिया आहियूं। आलमी मार्केट में तेल जा अघ आसमान ते पहुतल आहिनि। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो आहे त ख़ितो इंताई नाज़ुक दौर मां गुज़री रहियो आहे। क़ौमी मफ़ादनि ऐं मूजिबि फ़ैसिला कया पिया वञनि। कराचीअ में सुपर हाईवे भरिसां घर मां 5 घर भातियुनि जा लाश हसनाबाद में फ्लैट मिलिया आहिनि। जा केतिरा ई ॾींहं पुराणा लाश मिलिया आहिनि। वधीक जांच कई, गिरफ़्तार करे वरितो। अलीमा ख़ान जे ख़ानदाननि ज़रियनि मूजिबि अलीमा ख़ान खे लाहौर जे अरपा माल वारे घर मां गिरफ़्तार कयो वियो आहे। अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करे कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो आहे।

0: बिजली जी खिलाफ फुरन सां गॾु अवामी ता मुख चौक खां रैलीअ में सियासी इल्मी अदबी तंज़ीम शहरनि सबब कारोबार मुतासिर थी रहियो आहे। बदअमनी ऐं मंशा जे विकरे सबब अवाम अज़ाब में वरितल आहे। बदम ख़तम कई वञे ऐं भान सैदाबाद अराज़ीअ जे मुख़्तलिफ़ ॻोठनि जे रहवासियुनि पारां बिजली बंदश ख़िलाफ़ रहवलदारनि ख़िलाफ़ एहतजाजी मान चयो त ॻोठ एजाज गंभीर, यासीन गंभीर, रफीक गांचो, जमाल आड़ू सन गांचो समेत मुख़्तलिफ़ ॻोठनि में बिजली बंदि आहे, जो बिजली सरकार मसइलो हल करे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उतरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: बाड़न जा लाश कढ़िया डॉक्टर उमर जो पंजाब में रहंदड़ भाव लाताल की जाहिर कर रो है टिन्हीं बाड़न की उम्र 10 वरन का घट है पोस्टमार्टम बाद मौत जा कारण मालूम थी सकता है।

सियासी जमातुनि जे एहतजाज खे ॾिसंदे इस्लामाबाद जे मुख़्तलिफ़ रोडनि ते कंटेनर रखिया विया। श्रीनगर हाईवे ते G9 वेझो कंटेनर लॻाया विया। सरीना चौक, डी चौक ऐं मारगला एवेन्यू भरिसां बि कंटेनर रखिया विया। पंजाब हुकूमत अटक पुल ते लोही शीखनि वारा कंटेनर पहुचाए छॾिया। पंजाब जी सिध समा वारे वज़ीर उज़्मा बुख़ारी जो चवण आहे त PTI बानीअ जा ॿार लंडन में आराम कनि पिया। हिते ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे ॿारनि खे सियासत लाइ इस्तेमाल कयो पियो वञे। एहतजाजनि ऐं धरणनि सां मुल्क खे रोज़ानो 120 अरब रुपियनि जो नुक़सान थींदो आहे। धरणा हणण पाण खे तकलीफ़ पहुचाइण वारी ॻाल्हि हूंदी। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे चयो त वॾनि ॾुखियाईनि सां मुआशी इस्तेहकाम हासिल कयो, हाणे तरक़ी तरफ़ वधणो आहे, पर धरणा तरक़ीअ जे सफ़र में रुकावट बणजंदा। अहिड़नि हालतुनि में धरणा हणण समुझ खां ॿाहिरि आहे। मुआशी तरक़ी सभिनी जी गॾियल ज़िमेवारी आहे। जमात इस्लामी जी अॼु कराचीअ खां इस्लामाबाद ताईं ट्रेन ज़रिए लांग मार्च जी शुरूआत। हाफिज़ नईम चयो त असांजो एहतजाज रियासत ख़िलाफ़ नाहे ऐं नई भञरा चाहियूं था। हुकूमत वटि नेवी ख़तम करण खां सवाइ ॿियो को बि रस्तो नाहे। मुतालबो न मञियो वियो त एहतजाजनि हुकूमत किरायो में तब्दील थी वेंदी। हुकूमत पंहिंजी ख़राब हुकमरानी जो बदिलो अवाम वठी रही आहे।

सुत्तमा वारे फाकी वजीर अता ताड़त जो चवण आहे त इस्लामाबाद में एहतजाज करण न ॾींदासीं। पीटीआई वारनि खे इस्लामाबाद में किथे बि रस्ता बंद करण न ॾींदासीं। जमात इस्लामी खे बि सलाह आहे त इस्लामाबाद तरफ़ न अचनि। कानून सभिनी लाइ बराबर आहे। अवाम जी तकलीफ़ जो अहसास आहे। तेल अघनि में अवाम खे रिलीफ ॾेई रहिया आहियूं। आलमी मार्केट में तेल जा अघ आसमान ते पहुतल आहिनि। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो त ख़ितो इंतिहाई नाज़ुक दौर मां गुज़री रहियो आहे। क़ौमी मफ़ादनि ऐं मुल्की ज़रूरतुनि मूजिब फ़ैसिला कया पिया वञनि। लाहौर पुलिस पीटीआई बानीअ जी भेण अलीमा खान खे गिरफ़्तार करे वरितो। अलीमा खान जी खानदानी ज़रियनि मूजिब अलीमा खान खां लाहौर जी अपर माल इलाइक़े वारे घर मां गिरफ़्तार कयो वियो। अलीमा खान खे गिरफ़्तार करे कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो।

पी टी आई बानीअ जो जेल में तिबी मुआइनो ज़रियुनि मूजिबि बानी जी ब्लड प्रेशर ऐं रत जी चकास कई वई। मेडिकल टीम में शिफ़ा आई इस्पताल ऐं पिम्स इस्पताल जा डॉक्टर्स बि शामिल हुआ।

0: हाणे हुकूमत बिजली ख़रीद न कंदी, बिजली पैदा कंदड़ ऐं इस्तेमाल कंदड़ पाण कंदा। तव्हां जे वरी वज़ीर अवेस लिगारी जो चवणो हो त वाफ़ेदार पंहिंजी मर्ज़ीअ सां बिजली ख़रीद करण जा पाबंद हूंदा। पावर डिवीज़न बिजली नीलामीअ जे लाइ प्रपोज़ल जारी करे छॾियो। ईंदड़ 5 सालनि ताईं बिजली जी नीलामी कई वेंदी। ईंदड़ कुझु सालनि में बिजली हिकु मंडी जीअं हलंदी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज़।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं।

0: मतलब मुस्तकिल मजूरी।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, उधंदा रहो।
4: जिस धरती पे कलंदर लाल शहबाज
5: की बनी है आवाज़,
4: जी
5: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: लाताल की जाहिर करे रहा है टिनी बार्डन की उम्र 10 वरन का घट है पोस्टमार्टम बाद मौत जा कारण मालूम थी सकंदा

वफाकी वज़ीर अता ताड़ चयो आहे त इस्लामाबाद में एहतजाज करण न ॾींदासीं। पीटीआई वारनि खे इस्लामाबाद में किथे बि रस्ता बंदि करण जो हक़ न आहे। जमात इस्लामी खे बि सलाह आहे त इस्लामाबाद तरफ़ न अचनि। कानून सभिनी लाइ बराबर आहे। अवाम जी तकलीफ़ जो अहसास आहे। पेट्रोल अघनि में अवाम खे रिलीफ ॾेई रहिया आहियूं। आलमी मार्केट में तेल जा अघ आसमान ते पहुतल आहिनि। पेट्रोलियम वारे वज़ीर अली परवेज़ मलिक चयो त ख़ितो इंतिहाई नाज़ुक दौर मां गुज़री रहियो आहे। क़ौमी मफ़ादनि ऐं मुल्की ज़रूरतुनि मूजिब फ़ैसिला कया पिया वञनि।

हुकूमत अॼु खां बिजली ख़रीद न कंदी, बिजली ठाहींदड़ ऐं वाफ़ेदार ख़रीद ऐं विकिरो कंदा, हुकूमत खे केर बि बिजली न विकिणी सघंदो। तवानाई वारे वज़ीर अवैस लिगारी चयो त नओं निज़ाम पहिरियों सनती ऐं बिजली जे वॾनि वाफ़ेदारनि ते लागू थींदो। पावर डिवीज़न बिजली नीलामीअ जे लाइ प्रपोज़ल जारी करे छॾियो, ईंदड़ 5 सालनि ताईं बिजलीअ जी नीलामी कई वेंदी।

दहशतगर्दनि जूं अवामी अच वञ वटि विझण जूं कोशिश दहशतगर्दनि जी हिते चौकी क़ाइम कई। दहशतगर्दनि जो शहरनि खे अगवा करणु, भतो वठणु ऐं गाॾियूं फुरकण जो मनसूबो हो। सिक्योरिटी फोर्स दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे नापाक इरादा नाकाम बणाए छॾिया। फायरिंग जी ॾे वठि में 5 दहशतगर्द मारा हुआ। 23 मुगवनि खे बाज़ियाब करायो वियो। दहशतगर्द मां वॾे अंग में हथियार बि हथ। पुलिस लाइन्स ते अपघाती हमले जो केस दाखिल। केस में दहशतगर्दी, कतल ऐं ॿिया कलम शामिल कया विया। FIR मूजिब पुलिस लाइन्स विरुद्ध सां भरियल गाॾी ज़रिए अपघाती हमिलो कयो वियो। हमले बाद दहशतगर्द फायरिंग कई, 21 ॼणा शहीद थिया ऐं CTD दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन में। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी अॼु ईरान दौरे ते रवानो थींदो। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जुमान मूजिब इस्माइल बकाई चयो त मोहसिन नकवी दौरो बितरफ़ी लाॻापन ते ॿधल हूंदो। मोहसिन नकवी जी ईरान दौरे बाबति कंहिं बि अमरीकी ख़बर नाहे।

आलमी मार्केट में तेल सस्तो थी वयो, पेट्रोल ए डीजल जे अघ में लात जो इम्कान। आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल जे अघ में घटताई रिकॉर्ड कई वई। अमरीकी तेल 1.58% घटताई का पोए $100 फी बैरल थी वयो। बरतानवी तेल $103 ए अमारती तेल $170 फी बैरल थी वयो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी हाने अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकर तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ए हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 बजे का शाम 5 बजे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

मगर आपके अंदर की छुपी हुई बात जो आपको लगता है कि आपकी मतलब लुक को अच्छी आपके ऊपर अच्छी नहीं लग रही, आपको सूट नहीं कर रही, लेकिन वो आपकी खामी जो आपको खामी लगती है वो खामी नहीं, दरअसल आपकी पहचान है। अगर आप उसका पहचान है तो वो आपकी पहचान ही है। तो जी बिल्कुल इसी को हम आगे लेके चलेंगे और इस पर बात करते जा रहे हैं। तो जी बिल्कुल अल्लाह ने आपको जो रंग दिया, जो शक्ल दी, जो ताकत दिया, ये इससे दिया कि वो उसे आपके साथ सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, यानी वो आपको उसके साथ सूटेबल लगा है तो उसने आपको दिया था। तो जब बनाने वाले ने आपको इतनी अहमियत दी है तो बताया आप खुद को क्यों कमतर समझते हैं, आप खुद को क्यों दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, ये तो अपने साथ ना इंसाफी कर रही हैं या कर रहे हैं। जो खालिक है, जो सबसे बेहतरीन बनाने वाला है, वो क्या कोई चीज बुरी बना सकता है? कभी भी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो तो बहुत अच्छा बनाने वाला है, उसने आपको और उसे बहुत बेहतर बनाया है, बहुत बेहतरीन बनाया। अगर आपको अपने अंदर कोई बुराई नजर आती है ना, कोई खामी नजर आती है, बुराई तो खैर कोई नहीं देखता, जो आपको अपने अंदर खामी नजर आ रही है ना, तो वो आप जरा इर्द गिर्द देखें, जो आपको मिला है वो किसी को नहीं मिला है। तो आप बहुत खूबसूरत, आप ऑलरेडी बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, गुड लुकिंग हो, आपको किसी की भी जो है ना तस्दीक की जरूरत नहीं, आपको किसी से भी इस चीज की मतलब कंफर्म नहीं करना, आपको इसकी वैलिडेशन की नीड नहीं है, अगर आप समझे तो। अच्छा जी, तो हमारे लिसनर्स हैं, कमेंट्स आए हुए हैं, चले मैं वो भी प्रोग्राम में शामिल कर देती हूँ, वरना फिर कहेंगे कोमल बातें करती शामिल नहीं करती। अच्छा जी, हमारे सबसे पहले लिसनर्स थे अब्दुल रजाक साहब थे जी, इन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात भेजी थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इन्होंने लिखा था कि कभी ये दावा कि वो मेरा है, कभी ये दावा कि वो मेरा है, कभी ये डर वो मुझसे जुदा तो नहीं, कभी ये दुआ कि उसे मिल जाए सारे जहां की खुशियां, कभी ये खौफ कि वो खुशी मेरे बिना तो नहीं, कभी ये ख्वाहिश कि वो जमाना मुंतजिर है, कि जमाना मुंतजिर है उसका, कभी ये डर, कभी ये वहम कि वो किसी से मिला तो नहीं हुआ, कभी ये डर कि उसकी आंखों में किसी, उसकी आंखों को किसी ने देखा तो नहीं, कभी ये आरजू के जो मांगे मिल जाए उसे। डेडिकेट मोहम्मद खान कुम्हार को जो है इन्होंने सेंड डेडिकेट करवाया थे। चले जी, आपके चाहने वालों को डेडिकेट कर चुके हैं और ये हमें सुन रहे हैं कुम्हार। अच्छा जी, तो मोहम्मद खान, मोहम्मद अली कुम्हार ने ये हमें हालीपोटा स्टाफ से सुन रहे हैं, इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा है। और ये चीज एक और जो है अच्छा सा ट्रैक शामिल करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ चाय भी इंजॉय करते हैं, यानी टी लवर्स अगर जो है वो भी याद है। फिलहाल मैं टी लवर तो नहीं हूँ, बट मुझे ये है कि कभी कभी वे चाय जरूर पीते हैं शाम में, प्रोग्राम के टाइम पर बड़ी वो होती है नीट की, भाई चलो हम मैं लाजमी टी जो हूँ लूँ चाय जरा। तो जी, हमारी भी आ चुकी, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ ही होंगे। तब तो एक अच्छा सा ट्रैक प्ले कर दिया है मैंने, आप लोग मेरे साथ ही इंजॉय करें जी। बिल्कुल डरिए का मत, सिर्फ सॉन्ग है मेरे कातिल मेरे दिलदार। तो जी, मैंने यहाँ प्ले कर दिया है ओ एस जे आवाज के रिश्ते में एक बहुत खूबसूरत।

कोई किसी की बात भी लिखी है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ प्रोग्राम में, जब तक मेरी चाय भी थोड़ी ठंडी हो जाए, क्योंकि मुझे तो पसंद है ठंडी चाय। अब आप लोगों का नहीं पता आप लोग कौन सी पीना पसंद करते हैं। अच्छा मेरा ये है कि मैं चाय ठंडी करके पीती हूँ। सब कहते हैं भाई ठंडी हो जाएगी पी लो पी लो, मैं कहती हूँ पहले ठंडी तो ना तभी तो पीऊंगी, गर्म तो मुझसे पी ही नहीं जाती है। और सम टाइम लोग होते हैं जो बहुत गर्म गर्म पी लेते हैं, जबकि इतनी गर्म चाय आपको नहीं पीनी चाहिए जो कि नुकसानदेह है। अच्छा जी, तो इन्होंने लिखी है, बालिशाह ने लिखा है कि

0: इतना कुछ नहीं है।
1: सोच के परेशान होती हूँ, मेहनत का क्या होगा।
0: एक दिन ऐसा भी आए जब तुम मुझसे पागलों वाली मांग करो।
2: कहीं मुमकिन हुआ कहीं भौज,
3: दिन में चमगादड़ देखा है तुमने कभी?
2: कहीं मुमकिन
3: बिल्कुल वैसा हो जाता, अगर उसका चेहरा न देखो तो।

0: शक्ल सलमान से नहीं होती। प्लीज मैं इन बुतों को पूछ थोड़ी रही हूँ।
1: पहले पहले अपने हाथ से बनाए हुए बुत से प्यार हो जाता है, फिर अपने आप से इश्क हो जाता है, फिर अपने आप को आदमी कामिल समझने लगता है।

ये है कि आप उस इंसान को अपने जहन से बाहर ना निकाल सके। उसके बारे में दिन और रात सोचते रहे, उससे बात करने के बाद होल्ड ऑन टू एवरी सिंगल वर्ड, यू आर ऑब्सेस्ड। तो हाँ, मुझे है मोहब्बत।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क।

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: Dharma Shum Varkoti Varkoti.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
4: Brought to you by
5: Sona Yulia Granular Mittiye Jo Maan Vadhai.
6: ममलकती वजीर तलाल चौधरी जो चवण हो तो पीटीआई केपी में दहशतगर्दी नथी रोके सके केपी के त अग में ही सोमनाथ बणाए छो अथन हर हंध के सोमनाथ बणायण उन्हनि जी रवायत रही आहे।

पीटीआई बानी की भेण लाहौर में गिरफ्तार। डीसी लाहौर जो चवण है अलीमा खान के 3 MPO तहत हिरासत में वरत वो। पार्टी जरियन मूजिब अलीमा खान के लिटन रोड त हिरासत में वी कोट लखपत जेल मुंतकिल कर कराची के एहसन आबाद वाले इलाके में एक फ्लैट में 5 लाश हथ। एसएसपी ओबर मीडिया से गाले तो पाड़ेसरी के इतला बाद पुलिस दरवाजो टोड़े फ्लैट में दाखिल थी तो जाल मुड़स चंदन 3 बार लाश मिलिया। डॉक्टर उमर जो पंजाब में रहंदड़ भाव लातालफी जाहिर कर रो है। टिन्हीं बार की उम्र 10 वर का घट है। पोस्टमार्टम बाद मौत ज कारण मालूम थी। सियासी जमातन के एहतजाज के दिसंदे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रोडन से कंटेनर रखा व्या। श्रीनगर हाईवे से G9 वेझो कंटेनर लगाया।

0: हम अपनी जात के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। हुकूमत ने यह तय किया हुआ है कि हम अपनी नाअहली, अपनी करप्शन, अपनी लूटमार, अपनी बैड गवर्नेंस का बदला आवाम से लेंगे। अच्छा टैक्स, गुंडा टैक्स, सज्जा टैक्स जो लेवी की सूरत में है, ये पेट्रोल की हर लीटर पर वसूल किया जा रहा है। लेवी का भत्ता अगर रहेगा तो फिर एहतजाज भी बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि फिर ऐसा ना हो कि ये हुकूमत गिराव के एरिज में तब्दील हो जाए।
1: जमात इस्लामी जी अज कराची का इस्लामाबाद ताई ट्रेन जरिए लॉन्ग मार्च की शुरुआत। हाफिज रहीम असो एहतजाज रियासत खिलाफ न नई वजह चाहूं था। हुकूमत वट लेवी खत्म करने का सवाय बो को भी रस्तो ना है। मुतालबो न मंझो वो तो एहतजाज हुकूमत किरायों में तब्दील थी वेंदो। हुकूमत पांजी खराब हुकुमरानी जो बदलो अवाम वठी रही है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवा के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तवा के भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे त उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306-244-7700।
3: دهر ماشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا ده یو نوی دنیا پلور روانوی خود پولیو رنز دا قدمونا و درولی هم شی

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 बुदंदा रहो
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुधी सघो सिंध 41 लख न्याणियूं स्कूलनि खां ॿाहिरि बहराड़ीअ में औरतुनि जी हालत ख़राब आहे हुकूमत रिपोर्ट पेश करे छॾी सिंध सरकार पारां कणक जो इमदादी अघु मुक़ररु करण वारो फ़ैसिलो 2 हफ़्ता मुलतवी कणक पोखींदड़ 25 एकड़नि ताईं जे मालिक 5.5 लख आबादगारनि ऐं हारनि लाइ DAP भाण जे मद में 4,000 रुपया फ़ी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान सिंध जे फ्लोर मिलनि खे 1 अक्टूबर खां कणक फराहमीअ जो फ़ैसिलो अटो सस्तो करण जो हुकुम सिंध सरकार पारां 10 सालनि खां पोइ ॻोढ़ाणू डेम हानिकार करार छोड़ बंदि नए डेम जूं तयारियूं मंशाद खे कीअं रोकजे घरू खाते पारां IG सिंध खे बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्ते जो हुकुम सिंध में हथियारनि जा नवां लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी नोटिफिकेशन जारी स्पेशल रिपोर्ट में अवां ॿुधी सघंदा सिंध में हारनि जा हक़ जबरी पोरे ऐं तशदुद जा अंग अखर सिंध हुकूमत सनफ़ी बराबरीअ बाबति पहिरीं सनफ़ी बराबरी रिपोर्ट पधरी करे छॾी काल इंसानी हक़नि वारे ख़ासि मामले राजवीर सिंह सोढो वज़ीर आला सां मुलाक़ात में रिपोर्ट पेश कई रिपोर्ट मूजिब साल 2023 में सिंध जी आबादी 5,56,90,000 ताईं पहुची वई जेका 2.57 सैकड़ो सालियानी शरह सां वधी रही आहे हर 100 औरतुनि जे मुक़ाबले में मर्दनि जो अंग 108.76 आहे रिपोर्ट में सिहत जे शुबे में लगातार अघभराई पेश कई वई आहे जिते सरकारी फंडनि जी विच साल 2023-2024 जे 214.5 अरब मां वधी साल 2024-2025 में 267.54 अरब रुपया थी वई आहे वियम दौरान मायरुनि जी फोतगीअ जी शरह 314 मां नुमाया तौर ते घटिजी हर लख ज़िंदा जबंदड़ ॿारनि ते 224 ताईं अची वई आहे जॾहिं त नवनि ॼावल ॿारनि जी फोतगीअ जी शरह हर 1,000 ज़िंदा जबंदड़ ॿारनि ते 24 हुई उन्हनि अघ भराइनि बावजूद तालीम जी शोभ सूबे जी सभ खां वॾो चैलेंज मां हिकु आहे रिपोर्ट मूजिब मर्दनि में ख़्वांदगीअ जी शरह 68 ऐं औरतुनि में 47 सैकड़ो आहे जॾहिं त बहराड़ी में औरतुनि में उहा शरह गणती जोगी हद ताईं घटि यानी 27.57 आहे 5-16 सालनि जे उमिरि जूं 40,80,000 खां वधीक छोकिरियूं स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि जेका ॻाल्हि फौरी ऐं लगातार कदमनि जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे उन मौके ते वज़ीर आला मुराद अली शाह चयो त सिंध हुकूमत ख़ासि सीड़पकारी इदारती सुधारनि ऐं सनफ़ी ज़रूरतुनि खे नज़र में रखंदे तरक़ियाती मनसूबाबंदी ज़रिए उन्हनि रुकावटुनि खे ख़तम करण जे लाइ पुरज़म आहे हुन चयो त असां अहिड़ी सिंध अॾण चाहियूं था जिथे हर औरत ऐं छोकिरीअ खे पढ़ण कमु करण अॻवाणी करण ऐं समाज में पंहिंजो हिसो विझण जी बराबरि मौकिया मिलनि सिंध सरकार पारां कणक जी इमदादी अघु मुक़ररु करण वारो फ़ैसिलो 2 हफ़्ता मुलतवी करे छॾियो आहे कणक पोखींदड़ 25 एकड़नि ताईं जे मालिकनि 5.5 लख आबादगारनि ऐं हारे लाइ DAP भाण जे मद में 4,000 रुपया फ़ी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान कयो वियो आहे मार्च में खुराक खाते खे कणक विकिरो कंदड़ 56,471 आबादगारनि खे 2,000 रुपया वाधू 6,000 रुपया ॾियण जो फ़ैसिलो कणक सब्सिडी 14.9 खां वधी 16 अरब ताईं पहुची वेंदी उन ॾसमी काल वज़ीर आला मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में चयो वियो त आबादगारनि जे लाइ ऐलानियल कणक सब्सिडी पैकेज मां सिंध जे लॻभॻि 5.5 लख कणक जे आबादगारनि खे फ़ाइदो पहुचंदो वॾे वज़ीर सिंधारी सपोर्ट प्रोग्राम तहत 25 एकड़नि ताईं ज़मीन जे मालिकी रखंदड़ कणक जे आबादगारनि जी नए सिंध रजिस्ट्रेशन जी हिदायत कई अॻु में फ़ाइदो वठंदड़नि जे रेवन्यू खाते ज़रिए ॿीहर तस्दीक कई वेंदी काबीना खे आगाही ॾिनी वई त मटियारी ऐं सखर ज़िलनि जे 3 देहनि मटियारी ज़िले जे देह मटियारी ऐं पलेजाणी ऐं सखर जे देह बागड़जीअ में ब्लॉक चेन ई सिस्टम शुरू कयो वेंदो बोर्ड ऑफ रेवन्यू पारां IBA यूनिवर्सिटी सखर जे तावन सां ई ट्रांसफर सिस्टम तयार कयो वियो आहे सिंध काबीना नए स्पोर्ट्स पॉलिसी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी काबीना इजलास में सिंध जी बासलाइत रांदीगरनि जी ॻोल्हा ऐं हिमत अफ़ज़ाई जे लाइ क़दम खणण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे सिंध में स्पोर्ट्स हॉस्टल्स ऐं अकेडमीज़ क़ाइमु करण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे सिंध सरकार थर जे कोयले जी खुटाई दौरान निकरंदड़ पाणीअ जे ज़खीरनि जे लाइ क़ाइम कयल ॻोढ़ाणे डेम खे 10 सालनि खां पोइ मक़ामी आबादीअ जे लाइ हानिकार करार ॾींदे पाणी छोड़ न करण जो ऐलान करे छॾियो उन हवाले सां सिंध जे माहौलियाती खाते जे पार्लियामानी सेक्रेटरी हसन अली शाह चयो त थर में कोयले जी खुटाई जे दौरान निकरंदड़ ज़हरीलो पाणी जे छोड़ जे लाइ ठाहियल ॻोढ़ाणे डेम ख़िलाफ़ मक़ामी रहवासियुनि जे दांह खे नज़र में रखंदे सिंध सरकार उते पाणी छोड़ बंदि करे छॾियो आहे कोयले जी खुटाई दौरान निकरंदड़ पाणी छोड़ करण लाइ मुतबादिल हंधु ॻोल्हियो
ॾियो पियो वञे। हुन चयो त पाणी जे ज़खीरनि जे लाइ ॻोढ़ाणे डेम जे साम्हूं जिते माण्हुनि जी अच वञ या ज़मीनूं न आहिनि उते ॿियो डेम ठाहियो पियो वञे। हुन चयो त ॻोठाणे जो मौक़ुफ़ सही हो, उते जे आसपास जी ज़ेर ज़मीन पाणीअ खे बि कोयले जे ज़हरीले पाणी ज़हरीलो करे छॾियो हो। सिंध सरकार 1 अक्टूबर खां परगणे जे फ्लोर मिलनि खे सरकारी कणक जारी करण जो फैसलो करे छॾियो आहे। काल वज़ीर आला हाउस मिसल जे लाज़मी खुराक खाते आगाह कयो त सूबे में 226.918 टन कणक ज़ब्त, 122 टन फ्लोर मिल, जॾहिं त 169.796 टन वापारियुनि ऐं ज़खीरा अंदोज़ कंदड़नि वटि हथाई आहे, जॾहिं त 25.350 टन कणक ते केस हली रहियो आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त खुराक खाते अॻु में खयल कणक जा 2.855 अरब रुपया अदा करे छॾिया। वॾे वज़ीर खुराक खाते खे हिदायत कई त 1 अक्टूबर खां फ्लोर मिलनि खे कणक जारी करण जे इंतज़ामनि खे हतमी शिकिल ॾिनी वञे। हुननि चयो त सरकारी कणक जो फ़ाइदो सार्फिनि ताईं अटे जी घटियल क़ीमतुनि जी सूरत में पहुचणु घुर्जे। खुराक खाते इजलास खे आगाह कयो त सिंध पास्को खां 1,90,000 मेट्रिक टन ऐं 2,23,450 मेट्रिक टन जे विच में कणक ख़रीद करण जो मनसूबो रखे थी। उन लाइ ट्रांसपोर्टेशन जी ट्रेडर अॻु में ई जारी कयो वियो आहे, जॾहिं त ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP 3,00,000 टन परॾेही कणक जी दरामद लाइ ट्रेडर जारी कयो। खुलण जो इम्कान आहे। इजलास खे ख़िताब कंदे मुराद अली शाह वरजायो त असां यकीनी बणाईंदासीं त सॼी स्थिति में कणक जी घुरबल स्टॉक मौजूद हुजे ऐं सार्फिन खे सस्ती क़ीमत ते अटो मिले।

फाते बाबत स्टेडिंग कमेटी पारा मंशियात के रोकथाम के लिए आई जी सिंध के बलोचिस्तान के घरू वजीर से राबतो कर असरायती हिकमत अमली जोड़ने की हिदायत कई वही है। आई जी सिंध पारा सिंध में डोहन के वारदात में घटाई वाली रिपोर्ट कमेटी के हवाले कई। मोबाइल फोन फुरवारे वारदात में इजाफे जो एतराफ़ किया वो। काल पीपी एमपीए फरियाल टालपुर की सदारत हेठ थियल इजलास में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल मंशियात विक्रे के इल्जाम हेठ आयल अनमोल उर्फ पिंके के केसन और बेन मामलों तफसीली गौर किया वो। पुलिस इख्तियार पारा

आलम ओढ़ो ब्रीफिंग ॾींदे चयो आहे त सिंध में मजमूई तौर ते अमन अमान जी सूरत हाल बहितर थी आहे। पुलिस इख़्तियारनि इजलास खे ॿुधायो त मनशियात विकिरो कंदड़ 9000 खां वधीक जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जॾहिं त ॿ ॾींहं अॻु ड्रग सप्लायर बि मारिजी वियो आहे। घरूखा ते सूबे में हथियारनि जा नवां लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी लॻाए छॾी। घरू वज़ीर जे तर्जुमान मूजिब नवनि हथियारनि जी डीलरशिप जा लाइसेंस जारी करण ते बि पाबंदी हूंदी। तर्जुमान मूजिब पाबंदीअ ते फौरी तौर अमल थींदो, जॾहिं त पाबंदी ईंदड़ हुकूमत ताईं बरक़रार रहंदी। को बि लाइसेंस जारी कंदड़ अथॉरिटी हथियारनि जो नओं लाइसेंस जारी न करे सघंदी, जॾहिं त हथियारनि जे वापार जे लाइ डीलरशिप जो नओं लाइसेंस बि जारी न कयो वेंदो। तर्जुमान मूजिब रुगो गैरमामूली ऐं ख़ासि केसनि में हथियारनि जा लाइसेंस जारी करण जी इजाज़त ॾेई सघे بھی اڑن قسم میں لاگا پل اختیار کھا اگواٹ منظوری وٹھن لازم موجب خاص قسم میں گھرو وزیر ائی وڈے وزیر جی منظوری گربل ہوندی۔

0: पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध में हारिन जे हकन जबरी पोरे ऐं औरतुनि खिलाफ़ तशद्दुद बाबति अहम रिपोर्ट साम्हूं आई आहे, जंहिं में सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में हारिन सां थींदड़ मुबैना ज़्यादतियुनि जबरी पोरे ऐं बुनियादी हक़नि जी खोट ते ॻणती ज़ाहिर कई वई आहे। हारी वेलफेयर एसोसिएशन पारां हैदराबाद क्लब में सिंध में हारिन जे हक़नि बाबति साल 2025 जे सालियानी 10 रिपोर्ट जारी कई वई। रिपोर्ट जी पधराई तकरीब के खिताब कंदे हारी वेलफेयर एसोसिएशन जे मर्कज़ी सदर चयो त सिंध में किरोड़े हारिन जा आइनी, कानूनी ऐं इंसानी हक़ मुतासिर थी रहिया आहिनि। हुननि मुतालबो कयो त हारिन जे लाइ सूबाई ऐं क़ौमी असेंबलियुनि तोड़े सेनेट में ख़ुसूसी नुमाइंदगी ॾिनी वञे, ज़रई ज़मीन जे निज़ाम में सुधार आंदा वञनि ऐं बेज़मीन हारिन खे क़ानूनी तौर रजिस्टर्ड करे हारी कार्ड जारी कया वञनि। मुतालबो कमीन हारिन खे सरकारी ज़मीन पारां पिण हारी हक़नि बाबति कंदड़नि खे मिलंदड़ ज़मीन जे रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुंतकिली ऐं ॿियनि क़ानूनी मामलनि ते बि ध्यानु ॾियणु ज़रूरी आहे। रिपोर्ट मूजिबि 2025 दौरान सिंध में औरतुनि ऐं छोकिरियुनि ख़िलाफ़ तशद्दुद जा 772 केस रिपोर्ट थिया। उन्हनि में 218 क़त्ल, 138 अगवा, 124 ख़ुदकुशियूं, 104 रेप या जिन्सी ज़्यादती, 24 घरेलू तशद्दुद, 72 गैरत जे नाले ते क़त्ल ऐं 35 जबरी शादियुनि जा केस शामिल आहिनि। ज़िले लिहाज़ खां खैरपुर में 75, लाड़काणे में 55, दातू में 45, सखर में 40 ऐं घोटके में 35 वाकिया रिपोर्ट थिया। रिपोर्ट में चयो वियो त 2025 दौरान क़बाइली ऐं फिरके वाराणी तशद्दुद जे वाकियनि में 337 माण्हू मुतासिर थिया, जिन मां 136 मारिजी विया ऐं 201 ज़ख़्मी थिया। रिपोर्ट मूजिबि खैरपुर ज़िलो क़बाइली तकरारनि खां वधीक मुतासिर इलाइक़ो मां रहियो, जॾहिं त अहिड़नि वाक्यनि सबबि बहराड़ी जी मईशत, ज़रात ऐं हारिन जे रोज़गार ते पिणु असरु पियो। रिपोर्ट मुताबिक़ 2018 खां 2025 ताईं ज़रई शोबे में 10,053 हारिन ऐं उन्हनि मां उमरकोट में 4,068, मीरपुर ख़ास में 1,764 ऐं सांगड़ में 1,576 केस रिपोर्ट थिया। रिपोर्ट में चयो वियो आहे त 2021 खां पोइ जबरी पोरे जी रिपोर्ट थियल केसनि में घटिताई ज़रूर आई आहे, पर हारिन जे हक़नि तहफ़ुज़ ऐं कानूनी सुञाणप बाबति मसला अञा बि मौजूदु आहिनि। हीअ रिपोर्ट हिकु अहम सवाल ज़रूर उथारे थी त सिंध जी ज़रई मईशत में बुनियादी किरदारु अदा कंदड़ हारिन खे संदन कानूनी, मुआशी ऐं इंसानी हक़ कॾहिं मुकमल तौर ते मिलंदा। हीउ हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंड अप। ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।
1: अवी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
4: खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे, जेकॾहिं तव्हां कंहिं भी बीमारी में मुफ़्त।
1: हक सच जो आवाज।
4: खुशखबरी मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आज

0: मैडिसो चेकअप फीस सिर्फ 600 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकला आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी MCB बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सघंदा सिंध में पौणा 41 लख न्याणियूं स्कूलन खां ॿाहिर बहराड़ीअ में औरतुनि जी हालत खराब आहे हुकूमत रिपोर्ट पेश करे छॾी सिंध सरकार पारां कणक जो इमदादी अघ मुक़रर करण वारो फ़ैसिलो 2 हफ़्ता मुलतवी कणक पोखींदड़ 25 एकड़नि ताईं जे मालिक 5.5 लख आबादगारनि ऐं हारनि लाइ DAP भाण जे मद में 4,000 रुपया फ़ी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान सिंध जे फ्लोर मिलनि खे 1 अक्टूबर खां कणक फराहमीअ जो फ़ैसिलो अटो सस्तो करण जो हुकुम सिंध सरकार पारां 10 सालनि खां पोइ ॻोढ़ाणू डेम हानिकार करार छोड़ बंद नए डेम जूं तयारियूं मंशियात खे कीअं रोकजे घरू खाते पारां IG सिंध खे बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्ते जो हुकुम सिंध में हथियारनि जा नवां लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी नोटिफिकेशन जारी ऐं स्पेशल रिपोर्ट बि अव्हां ॿुधी सघंदा सिंध में हारनि जा हक़ जबरी पोरे ऐं तशदुद जा अंग अखर सिंध हुकूमत सनफ़ी बराबरीअ बाबति पहिरीं सनफ़ी बराबरी रिपोर्ट पधरी करे छॾी काल इंसानी हक़नि वारे ख़ासि मामिल राजवीर सिंह सोढो वज़ीर आला सां मुलाक़ात में रिपोर्ट पेश कई रिपोर्ट मूजिबि साल 2023 में सिंध जी आबादी 5,56,90,000 ताईं पहुची वई जेका 2.57% सालियानी शरह सां वधी रही आहे हर 100 औरतुनि जे मुक़ाबले में मर्दनि जो अंग 108.76 आहे रिपोर्ट में सिहत जे शुबे में लगातार अघबराई पेश कई वई आहे जिते सरकारी फंडनि जी विर्च साल 2023-2024 जे 214.5 अरब मां वधी साल 2024-2025 में 267.54 अरब रुपया थी वई आहे वियम दौरान मायरुनि जी फोतगीअ जी शरह 314 मां नुमाया तौर ते घटिजी हर लख ज़िंदा ॼमंदड़ ॿारनि ते 224 ताईं अची वई आहे जॾहिं त नवनि ॼावल ॿारनि जी फोतगीअ जी शरह हर 1,000 ज़िंदा ॼमंदड़ ॿारनि ते 24 हुई उन्हनि अघबराइनि बावजूद तालीम जे शोबो सूबे जी सुभ खां वॾो चैलेंज मां हिकु आहे रिपोर्ट मूजिबि मर्दनि में ख़्वांदगीअ जी शरह 68 ऐं औरतुनि में 47% आहे जॾहिं त बहराड़ी में औरतुनि में उहा शरह गणती जोगी हद ताईं घटि यानी 27.57 आहे 5 खां 16 सालनि जे उमिरि जूं 40,00,000 80,000 खां वधीक छोकिरियूं स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि जेका ॻाल्हि फौरी ऐं लगातार कदमनि जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे उन मौके ते वज़ीर आला मुराद अली शाह चयो त सिंध हुकूमत ख़ासि सीड़पकारी इदारती सुधारनि ऐं सनफ़ी ज़रूरतुनि खे नज़र में रखंदे तरक़ियाती मनसूबाबंदी ज़रिए उन्हनि रुकावटुनि खे ख़तम करण जे लाइ पुरज़म आहे हुन चयो त असां अहिड़ी सिंध अॾणु चाहियूं था जिथे हर औरत ऐं छोकिरीअ खे पढ़ण कमु करण अॻवाणी करण ऐं समाज में पंहिंजो हिसो विझण जी बराबरि मौकिया मिलनि सिंध सरकार पारां कणक जी इमदादी अघ मुक़रर करण वारो फ़ैसिलो 2 हफ़्ता मुलतवी करे छॾियो आहे कणक पोखींदड़ 25 एकड़नि ताईं जे मालिकनि 5.5 लख आबादगारनि ऐं हारे लाइ DAP भाण जे मद में 4,000 रुपया फ़ी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान कयो वियो आहे मार्कमी खुराक खाते खे कणक विकिरो कंदड़ 56,471 आबादगारनि खे 2,000 रुपया वाधू 6,000 रुपया ॾियण जो फ़ैसिलो कणक सब्सिडी 14.9 खां वधी 16 अरब ताईं पहुची वेंदी उन ॾसमी काल वज़ीर आला मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में चयो वियो त आबादगारनि जे लाइ ऐलानियल कणक सब्सिडी पैकेज मां सिंध जे लॻभॻि 5.5 लख कणक जे आबादगारनि खे फ़ाइदो पहुचंदो वॾे वज़ीर सिंधारी सपोर्ट प्रोग्राम तहत 25 एकड़नि ताईं ज़मीन जे मालिकी रखंदड़ कणक जे आबादगारनि जी नए सिर रजिस्ट्रेशन जी हिदायत कई अॻमी फ़ाइदो वठंदड़नि जे रेवन्यू खाते ज़रिए ॿीहर तस्दीक कई वेंदी सिंध काबीना खे आगाही ॾिनी वई त मटियारी ऐं सखर ज़िलनि जे 3 देहनि मटियारी ज़िले जे देह मटियारी ऐं पलेजाणी ऐं सखर जे देह बागड़जीअ में ब्लॉक चेन ई सिस्टम शुरू कयो वेंदो बोर्ड ऑफ रेवन्यू पारां IBA यूनिवर्सिटी सखर जे तावन सां ई ट्रांसफर सिस्टम तयार कयो वियो आहे सिंध काबीना नए स्पोर्ट्स पॉलिसी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी काबीना इजलास में सिंध जी बासलाहियत रांदीगरनि जी ॻोल्हा ऐं हिमत अफ़ज़ाई जे लाइ क़दम खणण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे सिंध में स्पोर्ट्स हॉस्टल्स ऐं अकेडमीज़ क़ाइमु करण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे सिंध सरकार थर जे कोयले जी खुटाई दौरान निकरंदड़ पाणीअ जे ज़खीरनि जे लाइ क़ाइमु कयल ॻोढ़ाणे डेम खे 10 सालनि खां पोइ मक़ामी आबादीअ जे लाइ हानिकार करार ॾींदे पाणी छोड़ न करण जो ऐलान करे छॾियो उन हवाले सां सिंध जे माहौलियाती खाते जे पार्लियामानी सेक्रेटरी हसन अली शाह चयो त थर में कोयले जी खुटाई जे दौरान निकरंदड़ ज़हरीलो पाणी जे छोड़ जे लाइ ठाहियल ॻोढ़ाणे डेम ख़िलाफ़ मक़ामी रहवासियुनि जे दांह खे नज़र में रखंदे सिंध सरकार उते पाणी छोड़ बंदि करे छॾियो आहे कोयले जी खुटाई दौरान निकरंदड़ पाणी छोड़ करण लाइ मुतबादिल हंधु ॻोल्हियो
हलियो पियो वञे। हुन चयो त पाणी जे ज़खीरनि जे लाइ ॻोढ़ाणे डेम जे साम्हूं जिते माण्हुनि जी अच वञ या ज़मीनूं न आहिनि उते ॿियो डेम ठाहियो पियो वञे। हुन चयो त ॻोठाण जो मौक़ुफ़ सही हो, उते जे आस पास जी ज़ेर ज़मीन पाणीअ खे बि कोयले जी ज़हरीले पाणी ज़हरीलो करे छॾियो हो। सिंध सरकार 1 अक्टूबर खां परगणे जे फ्लोर मिलनि खे सरकारी कणक जारी करण जो फैसलो करे छॾियो आहे। काल वज़ीर आला हाउस में थियल इजलासी खुराकाते आगाह कयो त सूबे में 226.918 टन कणक ज़ब्त कई वई आहे। उन मां 57.122 टन फ्लोर मिलनि में मौजूद आहे, जॾहिं त 179.796 टन वापारियुनि ऐं ज़खीरा अंदोज़ कंदड़नि वटि हथाई आहे, जॾहिं त 25.350 टन कणक ते केस हली रहियो आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त खुराक खाते अॻिमें खयल कणक जा 2.855 अरब रुपया अदा करे छॾिया। वॾे वज़ीर खुराक खाते खे हिदायत कई त 1 अक्टूबर खां फ्लोर मिलनि खे कणक जारी करण जे इंतज़ामनि खे हतमी शिकिल ॾिनी वञे। हुननि चयो त सरकारी कणक जो फ़ाइदो सार्फिन ताईं अटे जी घटियल क़ीमतुनि जी सूरत में पहुचणु घुर्जे। खुराक खाते इजलास खे आगाह कयो त सिंध पास्को खां 1,90,000 मैट्रिक टन ऐं 2,23,450 मैट्रिक टन जे विच में कणक ख़रीद करण जो मनसूबो रखे थी। उन लाइ ट्रांसपोर्टेशन जी ट्रेडर अॻिमी जारी कयो वियो आहे, जॾहिं त ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP 3,00,000 टन परडे॒ही कणक जी दरामद लाइ टेंडर जारी कयो आहे। उहो टेंडर हिन हफ़्ते खुलण जो इम्कान आहे। इजलास खे ख़िताब कंदे मुराद अली शाह वरजायो त असां यकीनी बणाईंदासीं त सॼी स्थिति में कणक जी घुरबल स्टॉक मौजूद हुजे ऐं सार्फिन खे सस्ती क़ीमत ते अटो मिले। घरू खाते बाबति स्टेडिंग कमेटी पारां मंशियात जे रोकथाम जे लाइ IG सिंध खे बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्तो करे असराइती हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत कई वई आहे। IG सिंध पारां सिंध में ॾोहनि जे वारदातुनि में घटताई वारी रिपोर्ट कमेटीअ हवाले कई। मोबाइल फोन फुर वारनि वारदातुनि में इज़ाफ़े जो एतिराफ़ कयो वियो। काल PP MPA फरियाल टालपुर जी सदारत हेठि थियल इजलास में सूबे में अमन अमान जी सूरत हाल, मंशियात विकरे जे इल्ज़ामनि हेठि आयल अनमोल उर्फ पिंके जे केसनि ऐं ॿियनि मामलनि ते तफ़सीली गौर कयो वियो। पुलिस इख़्तियारनि पारां स्टेडिंग कमेटी में पेश कयल रिपोर्ट में चयो वियो आहे त बलोचिस्तान मां मंशियात जूं फैक्ट्रियूं आहिनि, उतां मंशियात सिंध ॾांहुं अचे थी। स्टेडिंग कमेटी IG सिंध खे हिदायत कई त बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्तो करे मंशियात जी स्मगलिंग रोकण जे लाइ असराइती पॉलिसी ठाही वञे। इजलास में IG सिंध जावेद आलम ओढो ब्रीफिंग ॾींदे चयो आहे त सिंध में मजमूई तौर ते अमन अमान जी सूरत हाल बहितर थी आहे। पुलिस इख़्तियारनि इजलास खे ॿुधायो त मंशियात विकिरो कंदड़ 9,000 खां वधीक जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जॾहिं त 2 ॾींहं अॻु ड्रग सप्लायर बि मारिजी वियो आहे। घरू खाते सूबे में हथियारनि जा नवां लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी लॻाए छॾी। घरू वज़ीर जे तर्जुमान मूजिब नवनि हथियारनि जी डीलरशिप जा लाइसेंस जारी करण ते बि पाबंदी हूंदी। तर्जुमान मूजिब पाबंदीअ ते फौरी तौर अमल थींदो, जॾहिं त पाबंदी ईंदड़ हुकूमत ताईं बरक़रार रहंदी। को बि लाइसेंस जारी कंदड़ अथॉरिटी हथियारनि जो नओं लाइसेंस जारी न करे सघंदी, जॾहिं त हथियारनि जे वापार जे लाइ डीलरशिप जो नओं लाइसेंस बि जारी न कयो वेंदो। तर्जुमान मूजिब रुगो गैरमामूली ऐं ख़ासि केसनि में हथियारनि जा लाइसेंस जारी करण जी इजाज़त ॾेई सघे। अहिड़नि केसनि में लाॻापियल इख़्तियारनि खां अॻुवाट मंज़ूरी वठण लाज़मी हूंदी। क़ाइदनि ऐं ज़ाब्तनि मूजिब ख़ासि केसनि में घरू वज़ीर ऐं वॾे वज़ीर जी मंज़ूरी घुरबल हूंदी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज, खित्ते की बनी है आवाज,
1: GA FM Network।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

मुक़रर करण वारो फ़ैसिलो थींदड़ 25 सिंध सरकार पारां 10 सालनि खां पोइ ॻोढ़ाणू डेम हाणे नए डेम जूं तयारियूं। मंशाद खे कीअं रोकजे? घरू खाते पारां IG सिद्ध खे बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्ते जो हुकुम। सिंध में हथियारनि जा नवां लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी, नोटिफिकेशन जारी। ऐं स्पेशल रिपोर्ट में अव्हां ॿुधी सघंदा, सिंध में हारनि जा हक़, जबरी पोरी ऐं तशदुद जा अंग अखर। सिंध हुकूमत सनफ़ी बराबरीअ बाबति पहिरीं सनफ़ी बराबरी रिपोर्ट पधरी करे छॾी। काल इंसानी हक़नि वारे ख़ासि मामिल राजवीर सिंह सोढो वज़ीर आला सां मुलाक़ात में रिपोर्ट पेश कई। रिपोर्ट मूजिबि साल 2023 में सिंध जी आबादी 5,56,90,000 ताईं पहुची वई, जेका 2.57% सालियानी शरह सां वधी रही आहे। हर 100 औरतुनि जे मुक़ाबले में मर्दनि जो अंग 108.76 आहे। रिपोर्ट में सिहत जे शुबे में लगातार अगभराई पेश कई वई आहे, जिते सरकारी फंडनि जी विर्च साल 2023-2024 जे 214.5 अरब मां वधी साल 2024-2025 में 267.54 अरब रुपया थी वई आहे। वियम दौरान मायरुनि जी फोतगीअ जी शरह 314 मां नुमाया तौर ते घटिजी हर लख ज़िंदा जमंदड़ ॿारनि ते 224 ताईं अची वई आहे, जॾहिं त नवनि ॼावल ॿारनि जी फोतगीअ जी शरह हर 1000 ज़िंदा जमंदड़ ॿारनि ते 24 हुई। उन्हनि अगभराइनि बावजूद तालीम जो शोबो सूबे जी सुभ खां वॾो चैलेंज मां हिकु आहे। रिपोर्ट मूजिबि मर्दनि में ख़्वांदगीअ जी शरह 68 ऐं औरतुनि में 47% आहे, जॾहिं त बहराड़ी में औरतुनि में उहा शरह गणती जोगी हद ताईं घटि, यानी 27.57 आहे। 5 खां 16 सालनि जे उमिरि जूं 40,80,000 खां वधीक छोकिरियूं स्कूलनि खां ॿाहिरि आहिनि, जेका ॻाल्हि फौरी ऐं लॻातार क़दमनि जी ज़रूरत ते ज़ोर ॾिनो वियो आहे। उन मौक़े ते वज़ीर आला मुराद अली शाह चयो त सिंध हुकूमत ख़ासि सीड़पकारी इदारती सुधारनि ऐं सनफ़ी ज़रूरतुनि खे नज़र में रखंदे तरक़ियाती मनसूबाबंदी ज़रिए उन्हनि रुकावटुनि खे ख़तम करण जे लाइ पुरअज़म आहे। हुन चयो त असां अहिड़ी सिंध अॾणु चाहियूं था जिथे हर औरत ऐं छोकिरीअ खे पढ़ण, कमु करण, अॻवाणी करण ऐं समाज में पंहिंजो हिसो विझण जी बराबरि मौक़ा मिलनि। सिंध सरकार पारां कणक जी इमदादी अघ मुक़ररु करण वारो फ़ैसिलो 2 हफ़्ता मुलतवी करे छॾियो आहे। कणक पोखींदड़ 25 एकड़नि ताईं जे मालिकनि 5.5 लख आबादकारनि ऐं हारे लाइ DAP भाण जे मद में 4,000 रुपए फ़ी एकड़ सब्सिडी जो ऐलान कयो वियो आहे। मार्कमी खुराक खाते खे कणक विकिरो कंदड़ 56,471 आबादकारनि खे 2,000 रुपया वाधू 6,000 रुपया ॾियण जो फ़ैसिलो। कणक सब्सिडी 14.9 खां वधी 16 अरब ताईं पहुची वेंदी। उन ॾसमी काल वज़ीर आला मुराद अली शाह जे सदारत हेठि थियल सूबाई काबीना जे इजलास में चयो वियो त आबादगारनि जे लाइ ऐलानियल कणक सब्सिडी पैकेज मां सिंध जे लॻभॻ 5.5 लख कणक जे आबादगारनि खे फ़ाइदो पहुचंदो। वॾे वज़ीर सिंधारी सपोर्ट प्रोग्राम तहत 25 एकड़नि ताईं ज़मीन जे मालिकी रखंदड़ कणक जे आबादगारनि जी नए सिर रजिस्ट्रेशन जी हिदायत कई। अॻु में फ़ाइदो वठंदड़नि जे रेवन्यू खाते ज़रिए ॿीहर तस्दीक कई वेंदी। सिंध काबीना खे आगाही ॾिनी वई त मटियारी ऐं सखर ज़िलनि जे 3 देहनि, मटियारी ज़िले जे देह मटियारी ऐं पलेजाणी ऐं सखर जे देह बागड़जीअ में ब्लॉक चेन ई सिस्टम शुरू कयो वेंदो। बोर्ड ऑफ रेवन्यू पारां IBA यूनिवर्सिटी सखर जे तावन सां ई ट्रांसफर सिस्टम तयार कयो वियो आहे। सिंध काबीना नए स्पोर्ट्स पॉलिसी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। काबीना इजलास में सिंध जी बासलाहियत रांदीगरनि जी ॻोल्हा ऐं हिमत अफ़ज़ाई जे लाइ क़दम खणण जी मंज़ूरी ॾिनी आहे। सिंध में स्पोर्ट्स हॉस्टल्स ऐं अकेडमीज़ क़ाइमु करण जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। सिंध सरकार थर जे कोयले जी खुटाई दौरान निकरंदड़ पाणीअ जे ज़खीरनि जे लाइ क़ाइमु कयल ॻोढ़ाणे डेम खे 10 सालनि खां पोइ मक़ामी आबादीअ जे लाइ हानिकार करार ॾींदे पाणी छोड़ न करण जो ऐलान करे छॾियो। उन हवाले सां सिंध जे माहौलियाती खाते जे पार्लियामानी सेक्रेटरी हसन अली शाह चयो त थर में कोयले जी खुटाई जे दौरान निकरंदड़ ज़हरीलो पाणी जे छोड़ जे लाइ ठाहियल ॻोढ़ाणे डेम ख़िलाफ़ मक़ामी रहवासियुनि जे दांह खे नज़र में रखंदे सिंध सरकार उते पाणी छोड़ बंदि करे छॾियो आहे। कोयले जी खुटाई दौरान निकरंदड़ पाणी छोड़ करण लाइ मुतबादिल हंधु ॻोल्हियो पियो वञे। हुन चयो त पाणी जे ज़खीरनि जे लाइ ॻोढ़ाणे डेम जे साम्हूं जिते माण्हुनि जी अच वञ या ज़मीनूं न आहिनि उते ॿियो डेम ठाहियो पियो वञे। हुन चयो त ॻोठाणे जो मौक़ुफ़ सही हो, उते जे आसपास जी ज़ेर ज़मीन पाणीअ खे बि कोयले जी ज़हरीले पाणी ज़हरीलो करे छॾियो हो। सिंध सरकार 1 अक्टूबर खां परगणे जे फ्लोर मिलनि खे सरकारी कणक जारी करण जो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे। काल वज़ीर आला हाउस में थियल इजलास में खुराक खाते आगाह कयो त सूबे में 226.918 टन कणक ज़ब्त कई वई आहे। उन मां 57.122 टन फ्लोर मिलनि में मौजूदु आहे, जॾहिं त 179.796 टन वापारियुनि ऐं ज़खीरा

दोज़ कंदड़नि वटि हथ आई आहे, जॾहिं त 25.350 टन कणक ते केस हली रहियो आहे। इजलास खे ॿुधायो वियो त ख़ोराक खाते अॻिमी कयल कणक जा 2.855 अरब रुपया अदा करे छॾिया। वॾे वज़ीर ख़ोराक खाते खे हिदायत कई त 1 अक्टूबर खां फ्लोर मिलुनि खे कणक जारी करण जे इंतज़ामनि खे हतमी शिकिल ॾिनी वञे। हुननि चयो त सरकारी कणक जो फ़ाइदो सार्फिन ताईं अटे जी घटियल क़ीमतुनि जी सूरत में पहुचणु घुर्जे। ख़ोराक खाते इजलास खे आगाह कयो त सिंध पासको खां 1,90,000 मैट्रिक टन ऐं 2,23,450 मैट्रिक टन जे विच में कणक ख़रीद करण जो मनसूबो रखे थी। उन लाइ ट्रांसपोर्टेशन जी ट्रेडर अॻिमी जारी कयो वियो आहे, जॾहिं त ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान TCP 3,00,000 टन परडे॒ही कणक जी दरामद लाइ टेंडर जारी कयो आहे। उहो टेंडर हिन हफ़्ते खुलण जो इम्कान आहे। इजलास खे ख़िताब कंदे मुराद अली शाह वरजायो त असां यकीनी बणाईंदासीं त सॼी स्थिति में कणक जी घुरबल स्टॉक मौजूदु हुजे ऐं सार्फिन खे सस्ती क़ीमत ते अटो मिले। घरू खाते बाबति स्टेडिंग कमेटी पारां मंशियात जे रोकथाम जे लाइ IG सिंध खे बलूचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्तो करे असराइती हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत कई वई आहे। IG सिंध पारां सिंध में डोहनि जे वारदातुनि में घटाई वारी रिपोर्ट कमेटी जे हवाले कई। मोबाइल फोन फुर वारनि वारदातुनि में इज़ाफ़े जो एतराफ़ कयो वियो। काल PP MPA फरियाल टालपुर जी सदारत हेठि थियल इजलास में सूबे में अमन अमान जी सूरत हाल, मंशियात विकरे जे इल्ज़ामनि हेठि आयल अनमोल उर्फ़ पिंके जे केसनि ऐं ॿियनि मामलनि ते तफ़सीली गौर कयो वियो। पुलिस इख़्तियारनि पारां स्टेडिंग कमेटी में पेश कयल रिपोर्ट में चयो वियो आहे त बलूचिस्तान मां मंशियात जूं फैक्ट्रियूं आहिनि, उतां मंशियात सिंध ॾांहुं अचे थी। स्टेडिंग कमेटी IG सिंध खे हिदायत कई त बलूचिस्तान जे घरू वज़ीर सां राब्तो करे मंशियात जी स्मगलिंग रोकण जे लाइ असराइती पॉलिसी ठाही वञे। इजलास में IG सिंध जावेद आलम ओढो ब्रीफिंग ॾींदे चयो आहे त सिंध में मजमूई तौर ते अमन अमान जी सूरत हाल बहितर थी आहे। पुलिस इख़्तियारनि इजलास खे ॿुधायो त मंशियात विकिरो कंदड़ 9,000 खां वधीक जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे, जॾहिं त 2 ॾींहं अॻु ड्रग सप्लायर बि मारिजी वियो आहे। घरू खाते सूबे में हथियारनि जा नवां लाइसेंस जारी करण ते पाबंदी लॻाए छॾी। घरू वज़ीर जे तर्जुमान मूजिब नवनि हथियारनि जी डीलरशिप जा लाइसेंस जारी करण ते बि पाबंदी हूंदी। तर्जुमान मूजिब पाबंदीअ ते फौरी तौर अमल थींदो, जॾहिं त पाबंदी ईंदड़ हुकूमत ताईं बरक़रार रहंदी। को बि लाइसेंस जारी कंदड़ अथॉरिटी हथियारनि जो नओं लाइसेंस जारी न करे सघंदी। जॾहिं त हथियारनि जे वापार जे लाइ डीलरशिप जो नओं लाइसेंस बि जारी न कयो वेंदो। तर्जुमान मूजिब रुगो गैरमामूली ऐं ख़ासि केसनि में हथियारनि जा लाइसेंस जारी करण जी इजाज़त ॾेई सघे। अहिड़नि केसनि में लाॻापियल इख़्तियारनि खां अॻुवाट मंज़ूरी वठण लाज़मी हूंदी। क़ाइदनि ऐं ज़ाब्तनि मूजिब ख़ासि केसनि में घरू वज़ीर ऐं वॾे वज़ीर जी मंज़ूरी घुरबल हूंदी।

0: पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंध में हारिन के हकन जबरी पोरे औरतुन खिलाफ तशद्दुद बाबत अहम रिपोर्ट सामू आई है, जैमें सिंध के मुख्तलिफ़ इलाकन में हारिन से थन्दड़ मुबैना ज्यादतिन जबरी पोरे बुनियादी हकन की खोट ते गणती जाहिर कई वही है। हारी वेलफेयर एसोसिएशन पारा हैदराबाद क्लब में सिंध में हारिन के हकन बाबत साल 2025 के सालियानी दही रिपोर्ट जारी कई वही। रिपोर्ट की पधराई तकरीब के खिताब कदे हारी वेलफेयर एसोसिएशन के मरकजी सदर सिंध में करोड़े हारिन जहा आइनी कानूनी इंसानी हक मुतासर थी रहा है। उन्होंने मुतालबो कर हारिन के लिए सूबाई कौमी असेंबली तोड़े सेनेट में खसूसी नुमाइंदगी दिनी वे जरई जमीन के निजाम में सुधार आंदा वन बेजमीन हारिन के कानूनी तौर रजिस्टर्ड कर हारी कार्ड जारी कया वन। रिपोर्ट में उहो भी मुतालबो किया बेजमीन हारिन हरियाणियों के सरकारी जमीन रिहाइश लाइ प्लाट बुनियादी सहूलतू फराहम कई वन जडे त जरई मजदूर के सोशल सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन कर हुकूमत पारा मुकर्र कल घट में घट उजरत डनी वे। इंसानी हक के अगवाण पिण हारिन के बुनियादी हकन बाबत खदशन जो इजहार कदे हरियाणियों के विरसे में मिलंदड़ जमीन के रेवन्यू रिकॉर्ड में मुंतकली बिन कानूनी मामलों से भी ध्यान दियण जरूरी है। रिपोर्ट मूजिब 2025 दौरान सिंध में औरतुन छोकरिन खिलाफ तशद्दुद जा 772 केस रिपोर्ट थिया। उन्हनि में 218 कत्ल, 138 अगवा, 124 खुदकुशियूं, 104 रेप या जिन्सी ज्यादती, 24 घरेलू तशद्दुद, 72 गैरत के नाले ते कत्ल, 35 जबरी शादियुनि जा केस शामिल आहिनि। जिले लिहाज का खैरपुर में 75, लाड़काणे में 55, दादू में 45, सखर में 40, घोटके में 35 वाकया रिपोर्ट थे। रिपोर्ट में 2025 दौरान कबायली फिरके वारानी तशद्दुद के वाकयन में 337 मानू मुतासर थे, जिन में 136 मारजी व्या 201 जख्मी थे। रिपोर्ट मूजिब खैरपुर जिलो कबायली तकरारन का मुतासर इलाको में रहो, जडे त अड़न वाकयन सबब बहराड़ी की मईशत ज़रात हारिन रोजगार से पिण असर पियो। रिपोर्ट मुताबिक 2018 का 2025 तई ज़रई शोबे में 10,053 हारिन मजदूर के जबरी पोरे में आजाद कराया वो। उन्हें मां उमरकोट में 4,068, मीरपुर खास में 1,764, सांगड़ में 1,576 केस रिपोर्ट थे। रिपोर्ट में 2021 का पोए जबरी पोरे की रिपोर्ट थल केसन में घटताई जरूर आई है, पर हारिन के हकन तहफुज कानूनी सुजाणप बाबत मसला अजा भी मौजूद आन। ये रिपोर्ट एक अहम सवाल जरूर उथारे थी ते सिंध की जरई मईशत में बुनियादी किरदार अदा कदड़ हारिन के संदन कानूनी मुआशी इंसानी हक कदें मुकम्मल तौर ते मिलंदा। ही हुयो हिन वक्त जो सिंध राउंडअप। बे आचर जे सिंध राउंडअप तई गुलाब खान भेण के दींदा इजाजत। अल्लाह निगहबान।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज। बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।